FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 31 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिर 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कुइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सुनीता अग्रवाल।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज की कड़ी में हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव पर। श्रोताओं, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कृषि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्यान्न, पोषण एवं आजीविका संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे देश में 60% से भी अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% योगदान देती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कृषि ने अभूतपूर्व प्रगति की है। सन 1950-51 में खाद्यान्न का उत्पादन 51 मिलियन टन था, जो कि 2011-12 में बढ़कर 250 मिलियन टन हो गया था। इसी प्रकार से तिलहनों का उत्पादन भी 5 मिलियन टन से बढ़कर 28 मिलियन टन हो गया था। विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न पदार्थों जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, फल, चाय, कपास, गन्ना इत्यादि के उत्पादन के संदर्भ में भारतीय 3 शीर्ष स्थानों पर जगह बनाने में कामयाब रहा। लेकिन आज वही भारत विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा का कम या ज़्यादा होना, पवनों की दिशा में परिवर्तन आदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। ये ग्रीन हाउस गैसें धरातल से निकलने वाली अपरक्त विकिरणों यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों तथा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है और इससे बाढ़ एवं चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय कृषि पर अनावृष्टि का संकट सबसे ज़्यादा है क्योंकि आज भी सिंचाई से संबंधित व्यवस्था मानसून पर ही आधारित है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात तथा उत्तर पश्चिम भारत में पाले तथा मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं कृषि उत्पादन पर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं। जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फसलों, मृदा, मवेशी, कीट पतंगों पर प्रभाव देखा जा रहा है और इससे कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानसून के दौरान वर्षा अवधि में कमी आई है। शीतलहर एवं पाला, तिलहनों तथा सब्जियों के उत्पादन में भी कमी आई है। वर्ष 2003 में जनवरी माह में शीतलहर के कारण विभिन्न खाद्य पदार्थों में जैसे आम, पपीता, केला, टमाटर, आलू, मक्का, चावल आदि के उपयोग पर अधिक प्रभाव पड़ा था, उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा था। वर्ष 2004 में मार्च माह में तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप गेहूं की फसलें अपने निर्धारित समय से 10-20 दिन पहले ही तैयार हो गई थी, जिससे पूरे भारतवर्ष में गेहूं के उत्पादन में 4 मिलियन टन से भी ज़्यादा कमी आई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2009 में अनियमित मानसून के कारण चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जलवायु चरम सीमा तक परिवर्तित हुई है। जलवायु परिवर्तन विभिन्न प्रकार से कृषि को प्रभावित करता है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में उपजाऊ मृदा, जल, अनुकूल वातावरण, कीट पतंगों से बचाव आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक फसल को विकसित होने के लिए एक उचित तापमान, उचित प्रकार की मृदा, वर्षा तथा आर्द्रता की आवश्यकता होती है और इनमें से किसी भी मानक में परिवर्तन होने से फसलों की पैदावार भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन के जलीय चक्रण को प्रभावित करने के परिणाम स्वरूप कहीं अकाल तो कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फसलों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचता है। बागवानी फसलें अन्य फसलों की अपेक्षा जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। उच्च तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करता है, जैसे खरपतवार को बढ़ाकर फसलों और खरपतवार के बीच स्पर्धा को तीव्र करता है, कीट पतंगों तथा रोग जनकों की श्रेणी का विस्तार करता है। कृषि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि फसलों की ऐसी प्रजातियों को विकसित करना चाहिए।

0: शुष्कता एवं लवणता का दबाव सहने की क्षमता हो और जो बाढ़ एवं अकाल के प्रभाव से शून्य हो तथा सिंचाई एवं जल संबंधी व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहिए। नई कृषि तकनीकियों जैसे कि संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी फसल विविधीकरण कीट प्रबंधन को सुधारना मौसम पूर्वानुमान व्यवस्था में सुधार लाना इत्यादि को अपनाना होगा तभी कृषि उत्पादन सही ढंग से हो पाएगा। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 243।
2: नंबर 243 243।

अत्रि ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्यलोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कांड। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनुपमा तिवारी को। विषय है सत्संगति का प्रभाव।
1: शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संगति, अर्थात सच्चे या अच्छे मनुष्यों की संगति। इसमें यह तो सत्य है कि मनुष्य समाज में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति प्राप्त करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे लाभ होता है, उसका कल्याण होता है, अन्यथा बुरी संगति के कारण वह जीवन में असफल होकर दर दर की ठोकरें खाता है। अच्छी संगति वाला दुर्जन भी वैसा ही अच्छा जीवन जीते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। षठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सत्संगति के द्वारा मनुष्य न केवल अपना भला करता है अपितु वह अपनी जाति, समाज और राष्ट्र को भी पूरी तरह से लाभान्वित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा गाई है, सुनी आचरज करे जने कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति साधुओं की संगति होती है जो सब प्रकार से वंदनीय और प्रार्थनीय होती है। साधुओं की संगति तो सभी गुणों की खान है जो अवगुणों को भी सद्गुणों में बदल डालती है। सत्संगति दो प्रकार की होती है, प्रथम साधु और सज्जन पुरुषों के साथ रहने से और दूसरी हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। ये दोनों ही प्रकार की संगति हमें विवेक और सद्ज्ञान प्रदान करके जीवन मुक्ति के साधनों का पथ प्रदर्शन करती हुई संसार की अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति को उपकार के मार्ग पर चलाती है। इसीलिए सत्संगति के लिए कहा गया है कि वह अज्ञानी से अज्ञानी और जड़ से जड़ पदार्थों को भी ज्ञानवान और चेतनशील बनाती है। संगति से मनुष्य को केवल लाभ ही लाभ है। हमारे नीति के श्लोक से भी यह बात समझ में आती है, जाइये धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम, मनोनति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अज्ञानता का हरण करके मनुष्य की वाणी में सत्यता को प्रविष्ट कराती है, मन की उन्नति करके चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फहराती है, चेतना को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जो अच्छी संगति में रहता है उसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई बुराई असर नहीं करती। जैसे रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत करने से एवं उन्हें सुनने मात्र से सहज ही दुर्बुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में कदाचार, कर्तव्य पालन, धर्मनिष्ठा, व्यवहार कुशलता तथा मन वचन और कर्म की पवित्रता आदि सद्गुणों का विकास होता है। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अच्छी संगति के प्रभाव से मनुष्य दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानी बनकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि लुटेरे और डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग के प्रभाव से उच्च कोटि के संत, भक्त और आत्मज्ञानी हुए। अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन भगवान बुद्ध के सत्संग के प्रभाव से उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, दूर हो गए। इसीलिए दुष्टों से दूर रहकर सत्संगति में रहना हमारा ध्येय होना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन कार्यक्रम। समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को।

0: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना के तहत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता फैटी लीवर कारण एवं निदान विषय पर। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर ऋषि।
1: बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां निकलकर सामने आ रही है और हमारी जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित कर दे रही है। एक ऐसी ही बीमारी है फैटी लीवर की। 10 में से लगभग 7-8 लोग फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है और ख़ासकर जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, अल्कोहल लेता है, उसे ये बीमारी ज़्यादा पकड़ रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, वो भी फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों इस तरह की बीमारी आजकल हो जा रही है और समय रहते हैं इसका हम उपचार कैसे करें और सबसे अच्छी बात कि हम सावधानियाँ क्या क्या रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर साहब स्वागत है
2: जी। नमस्ते
1: डॉक्टर साहब, ये फैटी लीवर क्या है और ये कॉमन क्यों होता जा रहा है?
2: जी, ऐसा है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है। मतलब अगर आप अपने प्रैक्टिस में 10 लोगों को अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो उसमें 7 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर आ रहा है। तो ये आम चिकित्सकों के लिए एक बहुत पैनिक सा कंडीशन हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इस पे गहन अध्ययन करते हैं और इस पे अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये पता चलता है कि मुख्यतः जो लीवर की समस्या होती है वो पहले अल्कोहल के कंजप्शन से होती थी। अल्कोहल लेने से लीवर में सूजन आ जाता था जिसे हम लोग फैटी लीवर बोलते थे, जिसको बोलते थे अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उससे ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब कि जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उन्हें भी फैटी लीवर हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है और वो है आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार, आपका रहन सहन, आपका फूड हैबिट्स। तो जब हम ये देखते हैं कि आज के डेट में लोग फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, प्रिजर्वेटिव फूड पे आश्रित हो गए हैं, सीजनल फूड नहीं लेते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा आश्रित होते हैं, तो इस वजह से आपका जो फैटी लीवर है वो धीरे धीरे आम जनों में बहुत बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऐसा देखते हैं कि आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये काफ़ी बड़ा है, तो 5 से 10 सालों में लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप रात को सोते नहीं हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, फिर दिन में आप फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद फिर आप अगर अल्कोहल भी लेते हैं तो वो कंडीशन और पैनिक हो जाता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिक को अगर ठीक करेंगे, अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, अपने आहार विहार को ठीक करेंगे तो हम फैटी लीवर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
1: मतलब हमारी जो बदलती जीवन शैली है या यूँ कहें बिगड़ती जीवन शैली है वो बहुत हद तक इस फैटी लीवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है।
2: जी बिल्कुल।
1: हमारे खाने पीने, उठने बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, हम रात तक जगे रहते हैं जैसा आपने बताया, जब मन किया सो लिया, जब मन कर लिया खा लिया और खाना भी कैसा, वो तैलीय पदार्थ, और ये हमारे लीवर को रोगग्रस्त कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसका पहचान क्या है और समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी पहचान क्या है। तो जैसे ही फैटी लीवर स्टार्ट होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है तो लोग को लगता ही नहीं कि मुझे कोई परेशानी है, और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक स्टेज बहुत आगे बढ़ गया होता है। तो ये एक दिक्कत सी कंडीशन, अगर स्टार्टिंग में ही डायग्नोस हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है, ग्रेड 1 ही है, तो अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाते हैं तो वो 10 से 15 दिन की दवाइयों में आपकी फैटी लीवर ठीक हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, जैसे LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि आपकी लीवर का साइज वगैरह क्या है। साथ में अगर हम CBC करा लेते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं तो ये

0: कुछ छोटा सा टेस्ट है, इससे अगर आप चाहें तो निरंतर करने रहने से हम लोग फैटी लीवर को बहुत ही स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं, और अगर आप अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये पता चल जाता है।
1: और यदि लक्षण दिखने लग जाते हैं, यदि हम इग्नोर करने लग जाते हैं, ये सारी जो रूटीन टेस्ट है नहीं कराते हैं, तो फिर लक्षण क्या दिखने लग जाते हैं इसके?
0: हाँ, लक्षण में क्या है कि आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, पैर में सूजन आ जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीवर का फंक्शन होता है वो है मेटाबॉलिज्म, मतलब आपकी पाचन शक्ति वो कमज़ोर होने लगेगी। और लीवर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे जो सार भाग है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडीज़ को मिलता है। और एक लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो बाहर निकालता है। तो अगर हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको आलसीपन आने लगेगा, फिर आपके पैर में सूजन होने लगेगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचने लगेगा, तो ये सारी समस्या आपके फैटी लीवर्स की आती है।
1: डॉक्टर साहब, यदि शुरुआती लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं या हमने रूटीन टेस्ट कराया और मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है, तो फिर इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
0: देखिए, आज हम आज के इस सेशन में मैं यह बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लीवर की समस्या इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद पे आयुर्वेद चिकित्सा लेते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से और आयुर्वेदिक कुछ औषधियों से 100% ठीक होता है। तो इसमें एक आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। अगर हम विरेचन लेते हैं, जो कि एक पंचकर्म का प्रोसेस है, तो विरेचन से आपका लीवर खुद डिटॉक्स हो जाता है, मतलब वो शुद्धिकरण हो गया लीवर का, और उससे आपकी लीवर की सारी समस्याएँ ठीक हो जाती है। और उसके बाद कुछ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और कुछ अगर अपने वैद्य से या चिकित्सक की सलाह से जो भी वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पुनर्नमा से बनी हुई चीज़ें हो गई, भुई आंवला से बनी हुई चीज़ें हो गई, भृंगराज से बनी हुई चीज़ें हो गई, तो ये जो चीज़ें जो हमारे आसपास ये मिलती भी हैं ये चीज़ें, तो इसका सेवन करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऋतु शोधन, कि हर शरद ऋतु में अगर हम एक विरेचन ले लेते हैं तो हमसे लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएँ वो ख़त्म हो जाएगी और हम एकदम स्वस्थ रहेंगे
1: जी। और यदि फैटी लीवर की समस्याएं ज़्यादा हो गई है तो फिर उपचार किस प्रकार किया जाता है और कितना वक्त इसमें लग जाता है?
0: हाँ, अगर आप लीवर की समस्या से ग्रसित हो गए तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें, वो एक आपको एक प्लान बना के देंगे कि कैसे 2 से 3 महीने में आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे, आहार विहार को ठीक करेंगे, आयुर्वेदिक औषधि लेंगे और साथ में पंचकर्म की जो प्रोसेस है वो चालू रखेंगे। तो आने वाले 3 महीने में अगर आपका लीवर बहुत डैमेज हो गया, मतलब आप ऐसे 3 स्टेज हम लोग देखते हैं, पहले फैटी लीवर, और फैटी लीवर को अगर छोड़ा जाए तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसिस से वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लीवर सरोसिस से फाइनली वो लीवर कैंसर में मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है,
1: मतलब समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है।
0: हाँ, क्योंकि अगर हम फैटी लीवर्स में ही कंट्रोल नहीं किया जाए तो लीवर का एक अपना ऐसा गुण होता है कि वो लीवर के सूजन्स को कम करने के लिए लीवर उसमें एक स्कार बनाता है, मतलब कि उसके चारों तरफ एक छाया, मतलब उस पर एक दाग आता है, और दाग आने से लीवर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मतलब टफ होते जाता है, हार्ड होते जाता है, और उसका जो सिक्रीशन है, लीवर का जो फंक्शन है, वो धीरे धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, और वो धीरे धीरे लीवर फेल्यूर की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगर वो हम लोग लीवर फैटी लीवर को एक सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो।
1: डॉक्टर साहब, हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है,
0: बिल्कुल,
1: तो शुरुआत से ही हम अपने खान पान को सुधार कर रखें, अच्छी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें, बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं, अपने जीवन शैली को हम व्यवस्थित रखें, तो किस प्रकार कौन कौन चीज़ों का सेवन किया जाए और किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई जाए?
0: बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें होल ग्रेन्स पे डिपेंड होगा, आजकल मल्टी ग्रेन्स हम लोग खाते हैं तो ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल सब्जी पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें वैसे आर्टिफिशियल जो चीनी है या आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, उनसे हमको अपने आप को दूर रखना होगा, और जितनी भी घर से बनी हुई पदार्थें हैं उस पर डिपेंड होना होगा। और आज हमारे जो पंत प्रधान हैं उन्होंने कहा है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसके लिए हमें अपने खान पान में तेल और घी की मात्रा थोड़ी कम करनी होगी। आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आने वाले समय में जो फैटी लीवर

0: से लोग पैनिक हो रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमें मुख्यतः अपने घर की चीज़ों पे आश्रित होना होगा, मल्टीग्रेन्स पे आश्रित होना होगा, तेल कम करना होगा, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें कम लेनी होगी, जो स्टार्च रिच फूड है उसे कम करना होगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा लीवर काफ़ी अच्छा रहेगा।
1: अपने खान पान का यदि हम सही तरह से ध्यान रखते हैं, घर की बनाई हुई चीज़ों का हम सेवन करते हैं और बाहर का फास्ट फूड को हम ना भूलें, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम तेल का कम से कम धीरे धीरे तेल का उपयोग कम करें, कम तेल का इस्तेमाल करें, आज से ही शुरू करें, तो इन सारी बीमारियों के साथ साथ और भी जो अन्य बीमारियां हैं फैटी लिवर से हम मुक्त हो पाएंगे और साथ साथ मोटापा भी हमें घेर नहीं पाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो फिर पूरा परिवार फिट रहेगा।
0: आप अपना दिनचर्या ठीक करें, योग प्राणायाम और
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत फैटी लीवर पर ली गई भेंटवार्ता डॉक्टर ऋषि से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरम् 13,000 कोटिरूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, 1 च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिसा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 तमवर्षात् 31,2,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,300,000 कोटिरूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्षते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इण्डिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीनदेशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तम् अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक सञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि, दृश्यचित्राणि च चीनदेशस्य अरुणाचलप्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत्

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा हूं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाइक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तीनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का

ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कलाकार होंगी परवीन सुल्ताना। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय है 7:45। आज के कलाकार हैं चंदन दास। सुबह के 8 बजे दिल्ली के अंदर से ही समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले होंगे। 8:30 पर आप सुनेंगे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कड़ी संख्या 1354। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार और 10:05 पर हिंदी में समाचार रिले होंगे। 10:10 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दिन के 1 बजे हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

1:20 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार और 2:30 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से जारी होंगे। 2:55 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे रांची केंद्र से। 3 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली। 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम। 5:30 पर हमारे स्टूडियो से पुनः होगा कार्यक्रम विवरण।

5:35 परिवार साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवानी। चर्चा होगी राजीव गांधी जन्मदिवस पर युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और सोनू कुमार शर्मा की वार्ता होगी ऊर्जा का सदुपयोग जरूरी। शाम 6:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम। 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम होगा। शाम 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर उजाले की ओर कार्यक्रम आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में वार्ता होगी शिक्षा और रोजगार के बीच समन्वय हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम। रात्रि 8:00 चित्रपट से कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम। 8:30 पर सरहदी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे क्षेत्रीय फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम रात्रि 8:45 पर हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव परवीन सुल्तान।

स्वर सृष्टि कार्यक्रम की तहत अभी आप सुन रहे थे चंदन दास को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस

0: लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला

0: मुकाबला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। का जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। रांची में 26वें दिन छात्र आंदोलन स्थगित, छात्रों ने निकाली आभार यात्रा। नौकरी गंवाने वाले छात्रों ने निकाला आक्रोश मार्च। जेपीएससी जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 3 याचिका दायर, सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक। खान एवं खनन कानून को लेकर आंदोलन की बनेगी रणनीति। एचईसी की स्थिति सुधारने के लिए रांची दौरे पर केंद्रीय संसदीय कमेटी।

0: की टीम आज प्लांट निरीक्षण और प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाएं रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद समाप्त हो गया है। हालांकि इस फैसले से पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों में नाराजगी है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आभार यात्रा भी निकाली। वहीं सरकार के फैसले से 28 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। छात्रों ने फिलहाल आंदोलन समाप्त कर अगले 60 दिनों तक जांच की प्रक्रिया पर नजर रखने का फैसला किया है, लेकिन प्रभावित कर्मचारियों के विरोध और सीबीआई जांच की मांग के बीच झारखंड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के बाद रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह जीत सामूहिक संघर्ष का परिणाम है।
2: धांधली नहीं चलेगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, फिर भी नहीं चलेगा। झारखंड का उदाहरण है, अब कोई धांधली नहीं। 16 दिन भूख हड़ताल, 24 दिन का सत्याग्रह, 44 दिन का संघर्ष, 22 परीक्षा रद्द, 6 परीक्षा स्थगित।
0: जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द किए जाने के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सोनम कुमारी, अवधेश कुमार एवं अन्य की ओर से अलग अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। आज अदालत में इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले से उनकी नियुक्ति पर संकट उत्पन्न हो गया है।
3: याचिका में हमने यही बताया है कि पहले तो हमारे एग्जाम पे कोई एलिगेशन नहीं था, एक था जिसका कोर्ट केस चल रहा है, वो मामला अभी कोर्ट के अंडर है, तो फिर इस तरह से आर्बिट्ररी डिसीजन लेना तो बिल्कुल गलत बात हुई ना। हमारी आखिर क्या गलती है? हम लोग 3 स्टेज एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो फिर सरकार आखिर किस रीजन से हम लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जाँच पड़ताल के इस तरह से निकाल सकती है।
0: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के संबंध में लिए गए निर्णय के बाद राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि सरकार सभी छात्रों के साथ न्याय की पक्षधर है। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बातें सामने आई, वे परीक्षाएं रद्द हुई या संदिग्ध परीक्षाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
4: मेरा यह मानना है कि यह देश, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः न्यायपालिका के निर्णयों पर चलती है। निश्चित रूप से सरकार के लिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा होगी और जो भी न्यायाधीश आएंगे वो सारे पक्षों के हितों में होंगे और सरकार भी उनका पूर्ण रूपेण अनुपालन करेगी।
0: इधर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सीआईडी जांच और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
5: सरकार एक सिरे से एग्जामिनेशन को रद्द कर दी। मेरा और छात्रों का यही सोच था कि ये जांच सीबीआई से हो, जो छात्र सेटिंग करके एग्जाम पास किया उसका दूध का दूध पानी हो, ना कि आप सभी मामलों को उलझा कर छात्रों का भविष्य को लटकाना और अटकाना चाहते हैं। यही सीआईडी की मंशा पहले भी थी और भविष्य में यही होगा।
0: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल एवं रद्द की गई परीक्षाओं में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराते हुए 8 मांग मुख्यमंत्री से किया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट

xhandlenews@air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खान एवं खनन कानून के विरोध में आंदोलन को लेकर रणनीति बनेगी। झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने रामगढ़ जिले का दौरा किया। समिति की सभापति डॉ. नीरा यादव की अध्यक्षता में परिसदन में आयोजित बैठक में सदस्य सुरेश बैठा और रोशन लाल चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से उप विकास आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों ने समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने जिले की बुनियादी समस्याओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की और कई आवश्यक निर्देश दिए। आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से केंद्रीय संसदीय कमेटी की 6 सदस्यीय टीम रांची के दौरे पर है। टीम का नेतृत्व सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं। इसमें 4 सांसदों के अलावा HEC के निदेशक, अध्यक्ष और भेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। आज HEC प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। रांची जिला में RTE अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर निःशुल्क नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी संपन्न हुई। उप विकास आयुक्त संजय भगत की अध्यक्षता में हुई इस प्रक्रिया में 35 विद्यालयों के लिए 89 बच्चों का चयन किया गया, जबकि कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला प्रशासन ने सभी चयनित बच्चों को बिना किसी शुल्क के कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने और संबंधित स्कूलों को एक सप्ताह में नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होने से आज से झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ होने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, इस खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, नियुक्तियां रद्द करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल, आज सुनवाई। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नौकरी से निकाले गए अफसर धरने पर, आक्रोश मार्च निकाला। प्रभात खबर की सुर्खी है, आंदोलन स्थगित कर लौटे छात्र, यात्रा निकालकर जताया आभार। हिंदुस्तान ने लिखा है, छात्र आंदोलन स्थगित, आभार यात्रा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, रांची में 26वें दिन छात्र आंदोलन स्थगित, छात्रों ने निकाली आभार यात्रा, नौकरी गंवाने वाले छात्रों ने निकाला आक्रोश मार्च। JPSC JSSC की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 3 याचिका दायर, सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक, खान एवं खनन कानून को लेकर आंदोलन की बनेगी रणनीति। HEC की स्थिति सुधारने के लिए रांची दौरे पर केंद्रीय संसदीय कमेटी की टीम, आज प्लांट निरीक्षण और प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रमों में। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, आप देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। रिमझिम बरसात के बीच गर्मी जो थी उससे हम सभी को राहत मिल चुकी है, लेकिन बरसात का यह मौसम अपने साथ कई समस्याओं को भी लेकर आता है। मच्छरों का प्रकोप इस मौसम में बढ़ जाता है, तो आपको अपने आप को बचाना है मच्छरों से, और जहां तक संभव हो आप उबला हुआ पानी पिएं और सावधानी बरतें। अगर आप सावधानी के साथ इस मौसम का आनंद उठाते हैं तो मौसम का आनंद बिल्कुल ही दुगना हो जाता है। बूंदों की सरगम, हवाओं का गीत, बारिश में खो जाए दिल की हर प्रीत, हर बूंद कहे एक नई कहानी, बारिश में बिखरे दिलों की रवानी।

बारिश की बूंदें जब धरा पर गिरती हैं तो लगता है जैसे धरती ने श्रृंगार कर लिया हो। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है और प्रकृति दुल्हन की तरह सज जाती है। ऐसे मौसम में हर दिल दीवाना होने को मचल उठता है और प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ जाता है। जब मौसम हो बारिश का, तेरे प्रेम की बारिश हो मैं जलमग्न हो जाऊं, तेरे प्रेम की बारिश हो मैं जलमग्न हो जाऊं, तुम घटा बन चली आओ मैं बादल बन जाऊं।

ए बारिश ज़रा थम के बरस, जब मेरा यार आ जाए तो जम के बरस। पहले न बरस कि वो आ न सके, फिर इतना बरस कि वो जा न सके।

इस मौसम में अपना और अपनों का रखें पूरा पूरा ख्याल, तभी आप लुत्फ उठा पाएंगे इस मौसम का। बरसात का यह मौसम जहां एक ओर चारों ओर हरियाली लाता है, वहीं फसलों के लिए भी यह मौसम यह समय बहुत अच्छा होता है। और चारों तरफ जब हरियाली होती है तो मन मयूर यूं ही नाच उठता है, झूम उठता है, और बारिश के मौसम का इंतजार पशु पक्षी फसल और प्रकृति की एक एक जीव को होता है। और मनुष्य की भी बात करें तो मनुष्य का भी मन बावरा हो उठता है, नाच उठता है, झूम उठता है बारिश के इस मौसम में। तो आप बारिश के मौसम का आनंद उठाएं, लेकिन सावधानियां भी बरतें, एहतियात भी बरतें, तभी आप इस मौसम का आनंद

फसल और प्रकृति की एक एक जीव को होता है। और मनुष्य की भी बात करें तो मनुष्य का भी मन बावरा हो उठता है, नाच उठता है, झूम उठता है बारिश के इस मौसम में। तो आप बारिश के मौसम का आनंद उठाएं, लेकिन सावधानियां भी बरतें, एहतियात भी बरतें, तभी आप इस मौसम का आनंद

0: आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का।
1: जोहार पलामू।

आप सभी का स्वागत है जोहार पलामू कार्यक्रम में। सभी को नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुविचार ऐसे जो आपके जीवन को बदल दें अगर आप इन पर करते हैं अमल। तो आज का सुविचार है, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है वह कभी नहीं हारता। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है वह कभी हारता नहीं। और बात करें मौसम की, तो मौसम बेहद सुहावना है। आज भी बारिश के आसार दिख रहे हैं और बादल छाए हुए हैं, धूप का नामो निशान नहीं है। बात करें टेम्परेचर की, तापमान की, तो अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। ह्यूमिडिटी 72% है, बादल छाए हुए हैं। कल यानी कि 21 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल भी गरज चमक और छिटपुट बारिश की संभावना व्यक्त की गई है हमारे पलामू जिले में और इसके आसपास के जिलों में। तो मौसम बेहद सुहावना है और ऐसे मौसम में जब चारों तरफ हरियाली हो, सावन के झूले पड़ चुके हों, तो मन मयूर यूं नाच उठता है, गा उठता है।

इस मौसम में, सावन के इस मौसम में विरहन के मन की व्यथा सुन रहे थे आप इस गीत के जरिए। और अब आपको हम रूबरू करवाते हैं अपने आसपास की मुख्य खबरों से, ताकि आप हमेशा अपडेट बने रहें। परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म। आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति जताया आभार। सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय देने पर बनी सहमति। जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी के खिलाफ 26 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त करने की औपचारिक घोषणा शाम 4 बजे की गई। इसके बाद शाम 6 बजे छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से साभार यात्रा निकाली गई। झारखंड सरकार की ओर से जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल सहित कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने की और कुल 45 परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की अधिसूचना जारी होने के बाद छात्रों ने यह फैसला लिया। हालांकि आंदोलन में शामिल छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। छात्रों का कहना है कि सरकार ने गड़बड़ियों की व्यापक जाँच का भरोसा दिलाया है और इसी भरोसे के आधार पर फिलहाल आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया गया है। आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि अब उनकी नज़र जांच की प्रक्रिया पर रहेगी। उन्होंने सरकार को जांच के लिए 60 दिनों का समय देने का फैसला किया है। छात्रों ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि के बीच जांच निष्पक्ष और सही तरीके से नहीं हुई या किसी तरह की लापरवाही सामने आई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंच की प्रमुख मांगों को स्वीकार किया है। छात्र हित में लिए गए फैसलों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। नियुक्त कर्मियों को हटाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती। झारखंड सरकार की ओर से 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को हटाने के आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने सरकार की इस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत आयोजित 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। याचिका में सोनम कुमारी ने कहा है कि उन्होंने दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर झारखंड में नियुक्ति के बाद योगदान दिया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने ट्रेनिंग भी पूरी की। इसी बीच राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। रिम्स में साल के अंत तक सभी टीचिंग पद भरे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई रिम्स सिलेक्शन कमेटी की बैठक। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सभा कक्ष में रिम्स सिलेक्शन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिम्स के चिकित्सकों एवं कर्मियों की वर्तमान स्थिति, रिक्त पदों तथा मानव संसाधन की आवश्यकता की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अपर सचिव, रिम्स निदेशक, सहायक निदेशक, विभाग के संयुक्त सचिव, निदेशक चिकित्सा शिक्षा और रिम्स के डॉक्टर हीरेंद्र बीरुआ समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि

एम्स में सृजित पदों और वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मियों की संख्या का समग्र आकलन किया जाए। विभिन्न विभागों में वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप पदों का रेशनलाइजेशन करते हुए संस्थान के मानव संसाधन ढांचे को रीस्ट्रक्चर किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पदों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद संबंधित प्रस्ताव संचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य टीचिंग पदों के लोग उपस्थित थे। विश्रामपुर नगर परिषद में 37 लाख की विकास योजनाओं का हुआ शिलान्यास। विश्रामपुर नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए मंगलवार को 37 लाख रुपए की 5 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर योजनाओं का शिलान्यास किया। वार्ड 1 में सिक्सी के मुख्य पथ सड़क से राजदेव चौधरी के घर तक PCC सड़क एवं सुरक्षा दीवार, वार्ड नंबर 13 में मुख्य मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक PCC सड़क एवं RCC नाली का निर्माण कराया जाएगा। बारिश में बड़ी परेशानी, स्कूली बच्चों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। लोटनिया पंचायत के पिपरडी गांव के ग्रामीण सड़क की बदहाली से परेशान हैं। गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण करीब 1 किलोमीटर तक लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से आवागमन करना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। कीचड़ में वाहन फंसने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। सबसे अधिक परेशानी छोटे छोटे स्कूली बच्चों को हो रही है। बारिश के बीच विद्यालय में प्रभात सभा तुलसीदास को किया गया याद। राजकीयकृत मध्य विद्यालय हुसैनाबाद परिसर में बुधवार को हल्की बारिश के बीच प्रभात सभा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, संविधान की प्रस्तावना और विद्यालय पट पर लिखे सामान्य ज्ञान की पुनरावृत्ति से हुई। और इस मौके पर महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों का वाचन किया गया। विशेष सत्र में प्राचार्य ने सावन, शुक्ल पक्ष और सप्तमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गोस्वामी तुलसीदास को याद किया। उन्होंने तुलसीदास के जीवन और साहित्यिक योगदान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत और कवि थे। उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उनके विचारों को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सहायक शिक्षक, शिक्षिकाएँ और ढेर सारे छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सरस्वती शिशु मंदिर में निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने लिया भाग। तुलसी के आदर्शों से संस्कारित हुआ विद्यालय परिसर, श्रद्धा से मनी तुलसीदास जयंती। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर जपला में गोस्वामी तुलसीदास जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यार्थियों ने तुलसीदास के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय संस्कृति, मर्यादा, भक्ति और आदर्श जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। वरिष्ठ आचार्य शशि कुमार ने कहा कि तुलसीदास महान कवि होने के साथ भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के सशक्त संवाहक थे। उनके साहित्य से सत्य, कर्तव्य, त्याग, सेवा, मर्यादा और सदाचार की प्रेरणा मिलती है। पलामू में 5 दिनों के बाद फिर उफान पर है कोयल, अमानत और औरंगा नदियां। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट। उफनती कोयल में स्टंट करते हुए दिखते हैं कुछ युवक। पलामू और इसके ऊपरी इलाके लातेहार, गुमला और लोहरदगा में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के कारण कोयल, अमानत, औरंगा, जिंजोई समेत अन्य छोटी नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। महज 5 दिनों के भीतर नदियों में दोबारा उफान आने पर निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है और नदी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। इस बीच मेदिनीनगर के कोयल रिवर फ्रंट से कुछ युवक जान की परवाह किए बिना उफनती नदी में स्टंट करते नजर आए। युवकों को नदी में छलांग लगाने और तेज धार में जाने का वीडियो भी सामने आया है। तेज बहाव के बीच इस तरह का खतरनाक स्टंट कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है।
भारी बारिश के कारण 14 अगस्त को भी कोयल नदी में भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ का पानी कोयल रिवर फ्रंट में पूरी तरफ फैल गया था, इससे रिवर फ्रंट की संरचनाओं को नुकसान पहुंचा था। नदी का बहाव इतना तेज था कि निर्माणाधीन दूसरे पुल के कार्य में लगी करोड़ों रुपए की भारी भरकम आधुनिक मशीनें और उपकरणें भी पानी में डूब गए थे। कांदू मोहल्ला, पहाड़ी मोहल्ला समेत कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया था। निचले इलाकों में कई

घर जलमग्न हो गए और लोग घंटों अपने घरों में फंसे रहे थे। चैनपुर के शाहपुर क्षेत्रों में भी कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था। बारिश लगातार होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और बारिश का पानी नदियों में, नालों में, तालाबों में जब भरा हुआ हो, जब ज़्यादा हो, तो ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही पानी से आपकी जो अटखेलियाँ हैं वे कभी भी जानलेवा साबित हो सकती हैं, और इसी खतरे को आगाह करता है यह गीत।

नीच धारे जो जाओ तो जय करो उस पारी।

ಲೈಬೇಕರು ಲೈಬೇಕರು ಲೈಬೇಕರು ಓ ಹಂಕನ.

और अब बारी है इतिहास के पन्ने पलटने की। आज के इतिहास में क्या कुछ है खास। आज है 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की पहली औपचारिक बैठक की शुरुआत 20 अगस्त को ही की थी। 1975 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए विकिंग 1 अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 20 अगस्त 1901 में भारत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी का जन्म हुआ था। 1972 में आज की तारीख को तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1986 में भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव का जन्म हुआ था। 2014 में आज ही की तारीख को प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु BK.S. अयंगकर का निधन हुआ था। तो यह थी बातें आज के इतिहास की, यानी 20 तारीख के इतिहास की। और अब आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सतर्क, आपको सिर्फ साइबर क्राइम करने वालों से ही नहीं रहना है, बल्कि बरसात के मौसम में भी आपको हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि यह मौसम अपने साथ लेकर आता है मलेरिया, डेंगू, डायरिया और सर्दी जुकाम जैसी बहुत सी बीमारियाँ। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला या साफ पानी पिएं, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, ताज़ा और गर्म खाना खाएं तथा मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी और पूरी बांह के कपड़े पहनें। कूलर, गमले और टायरों में पानी न जमा होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं और शरीर को ढकने वाले पूरे बाजू के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो मच्छरों से आपका बचाव होगा। क्रीम या ओडोमास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो मच्छर भगाने की क्रीम होती है। खान पान में भी आपको सावधानी बरतनी है। हमेशा घर का बना हुआ गर्म और ताज़ा ही खाना खाना है, बाहर का खाना छोड़ दें। सड़कों पर खुले में मिलने वाली चीज़ें जो ठेले पर मिलती हैं, चाट पकौड़ी, फल, कटे हुए फल, ये सब बिल्कुल आप बरसात में ना खाएं। जो भी फल आप घर पे ले आएँ उसे भी अच्छी तरह से धोकर तभी फलों और सब्जियों का आप उपयोग करें। अपने हाथों को खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह से धोएं। भीगने से बचें, बारिश में ज़्यादा देर भीगने से बचें और घर आते ही स्नान करें। कपड़े सूखे हुए ही पहनें और साफ़ सुथरे ही कपड़े पहनें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बारिश के मौसम का आप आनंद उठा सकते हैं और घर से बाहर निकलते समय इस मौसम में छतरी और बरसाती अवश्य रखें। कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है और आप बेवजह भींग सकते हैं और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो आप इस तमाम एहतियात बरतें और मौसम का आनंद उठाते रहें। और इन बातों के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हमें अनुमति दें। आप सभी को हमारा जोहार।
1: जोहार पलामू।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन श्री प्रशांत गौरव का। और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलउदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका।

0: हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
0: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
1: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
0: जी हाँ, ये तो है।
1: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
0: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
1: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
0: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
1: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
1: जी
0: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
1: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
0: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
1: जी,
0: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
1: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
0: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
1: जी,
0: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
1: जी,
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी,
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
0: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी,
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी,
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई

0: कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं, तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
1: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट हट, यहाँ से मेरी बारी है।
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी जल्दी आएगी। सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
3: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे।

0: क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
1: अरे आ गए, देखो,
2: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है,
4: हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
5: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, पाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लद गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां!
1: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहूं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है! सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यूं चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
6: बहुत अच्छा।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
8: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
9: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई

0: तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
1: ये तुम्हारा हरा दिया, हरा दिया।
2: वैसे तनु, आज बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
3: जी,
2: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
3: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
2: ये कैसी अजीब बात है।
3: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
2: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
3: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
2: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
3: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
2: हाँ, बेटा सुनाता हूँ।
3: जल्दी सुनाइए।
2: अरे सोचने तो दो,
3: जल्दी
2: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
3: अरे जीवन काका।
2: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
4: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
2: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
4: जी
2: यहाँ लेट जाओ।
4: जी
2: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु।
3: जी।
2: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
3: जी अभी लाई।
2: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
4: जी
2: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
4: जी।
2: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
4: जी जी जी, जी।
2: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
3: जी, जी, जी, नाना जी।
2: हाँ ला बेटा ला। जीवन
4: जी
2: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना।

0: मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो।
2: ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस।
0: जी।
2: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
0: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
2: बेटे एकदम अलग आकार था।
0: अच्छा।
2: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
0: जी।
2: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
0: अच्छा।
2: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
0: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
2: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था। जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
0: अच्छा।
2: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
0: अच्छा।
2: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
0: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
2: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
0: जी,
2: जिसे बुखार होता
0: जी,
2: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
0: जी।
2: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
0: फिर
2: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
0: जी।
2: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
0: अच्छा।
2: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
0: लेकिन बुखार?
2: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
0: जी।
2: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
0: जी,
2: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
0: जी।
2: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
0: अच्छा।
2: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
0: क्या?
2: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
0: जी
2: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
0: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
2: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
2: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी।
2: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
2: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
2: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
0: जी।
2: समझ गई ना?
0: जी।
2: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
0: जी,
2: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा।
2: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
2: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
2: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
2: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
0: जी,
2: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।

0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी,
0: हाँ?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। आइए समाचारों के लिए दिल्ली चलते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप की कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक। ये 4 लेन

0: हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृष्ण जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में मादक पदार्थों के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे विफल रहा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरल, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said the total estimated cost of 9,450 crore rupees. The projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamadi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet.
0: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamari Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu today. 6 chief ministers and Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep administrators also are likely to participate in the meeting. High-ranking officials including chief secretaries and home secretaries from the southern states and union territories states will also participate in the event. The discussions will be held on various key issues including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnerships, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes. The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable

0: before the court in person. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ahmed. And in hockey, Indian women's team will face England today in the final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wegener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And in badminton, Indian shuttlers will be in action today in the pre-quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. Players will look to book their places in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था. वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मारतंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी. और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव था हमारा
2: जी.
1: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है. तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था जे एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया. छोटे छोटे थे तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका, लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था. फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था. जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई. तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी, जो आज तक चली जा रही है. नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज.
2: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना, कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है. एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं, तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या. तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया.
1: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई
2: जी.
1: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया. तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए.
2: अच्छा.
1: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब
2: जी.
1: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो
2: जी.
1: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेस करते थे. तो वहां से कुछ ना कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ. ऐसी शुरुआत हुई, तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम कोई ना कुछ. लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
2: जी,
1: कि उन्होंने हमें खिलने दिया जैसे हम खिलना चाहते
2: जी.
1: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है. छोटे छोटे थे तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो. फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी शूज लेके आते थे जाते थे, कभी वो लाते थे. उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए. फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो
2: निकल पड़े थे, मतलब
1: ऐसा था
2: भाग
1: कि मैं,
2: पड़े थे या निकल पड़े थे.
1: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं. अच्छा. भाग के नहीं आया
2: जी.
1: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और

0: मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से,
1: जी
0: मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे
1: नहीं
0: साथ में हमेशा रहा है।
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना
1: हाँ,
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते
0: रहती
1: थे।
0: थी।
1: जी जी जी
0: मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो
1: जी
0: जाता
1: लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था
1: हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडलजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे 1 मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या
1: जी
0: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
1: जी
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख, उनकी वॉइस, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ
0: ऐसा नहीं
1: ये
0: हो। मुझे
1: प्रश्न
0: कई सौ लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज़ ऐसे कैसी होगी,
1: जी
0: आपके जैसे हमारी आवाज़ कैसे होगी,
1: हाँ
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज़, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज़ वो नेचर से मिलती है।
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का
0: के
1: रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा?
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ
0: मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो हैं उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस वहां
1: अच्छा
0: होती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप
1: हाँ
0: नीचे की तरफ
1: सा
0: सा
1: के बाद
0: नी हा
1: नी,
0: नीचे
1: जी
0: आए
1: जी
0: आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं। हमारे
1: अच्छा
0: बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू, आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है,
1: जी
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर
1: जी
0: आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के, आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा है, मैंने बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपकी सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप

0: क्या कहना चाहते हैं,
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया। तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते
1: खुद खुद
0: हैं
1: के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या। और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशन हैं, वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: वहां पहुंच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: और
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है।
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते
0: हाँ
1: एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दें, ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाएं।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पता
1: जी
0: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी
0: बीच में तो काफ़ी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको ही ट्रिब्यूट दे रहा हूं। प्यार ही प्यार बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूं। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें
1: जी।
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूं,
1: जी
0: क्योंकि
1: स्वागत है।
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया।
1: इतना खूब गाया आपने, बेहतरीन। चलिए,

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में।
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं है
0: उसका।
1: उसका
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहां पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहां से
1: जी
0: आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है,
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा।

0: से करवाना है।
1: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय.
0: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
1: जी
0: थे
1: जी
0: वो, बहुत ही
1: बिल्कुल.
0: अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
1: यस
0: बड़े लोगों का करते थे।
1: जी
0: एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स होती थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
1: अप्लाई
0: वो
1: कर
0: दिया
1: दिया.
0: उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
1: हाँ
0: मेरी आंटी घर पर रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ
1: भूल
0: मैसेज मिलता नहीं
1: गई,
0: था,
1: भूल गई.
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रुक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय,
1: अच्छा
0: आई थिंक दैट वाज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ.
0: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी
0: बहुत बड़े
1: जी जी जी
0: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
1: जी
0: ठाकुर।
1: जी
0: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था ब्रुक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
1: बड़े
0: लोग थे।
1: लोग थे
0: तो
1: जी.
0: इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था।
1: जी
0: आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आप को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद
1: जी
0: रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा।
1: जी
0: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
1: जी
0: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
1: जी
0: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
1: हाँ
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
1: जी
0: उसमें किरदार था जीवन का,
1: जी
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जिससे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है, और वहां सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो डायलॉग था वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और इसमें हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़का था, मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोहनीश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया।
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती, तो
1: जी
0: अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने, उस
1: इतने
0: जमाने में
1: सारे
0: एटीज
1: सीरियल्स कर
0: हाँ
1: लिए, गाने तो याद रहते हैं ना.
0: हाँ
1: अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
0: जी
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी.
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाइएगा
1: जी
0: ना।
1: ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे.
0: मैं
1: आप दो पंक्तियां.
0: जिंदगी का साथ निभाता चला गया,

0: चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट
1: खुशी
0: रहे
1: है
0: हैं आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी
0: जी
1: बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है, तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन किन जगहों पर क्या क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था।
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था, देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ

0: असिस्टेंट थे, तो वो देव साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम, व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
1: आप
0: करते
1: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
0: थे
1: समय देव साहब यहां पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
0: मैं
1: दें।
0: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
1: जी जी
0: था,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर,
1: जी
0: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर कुछ में भी था,
1: जी
0: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था,
1: जी
0: उनका आनंद डबिंग भी था,
1: जी
0: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका एक कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में, मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे,
1: जी
0: लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां गया था, तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था,
1: अच्छा
0: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
1: उसी
0: इट इज
1: लूप
0: नॉट
1: में
0: मुझे
1: फंस
0: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था।
1: जाएंगे।
0: उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट, मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी, तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा, इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये
1: जी
0: मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए चाहे नेगेटिव रोल में, नेगेटिव के लिए मेरा बहुत अच्छा एक
1: जी
0: शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी
1: जी
0: आवाज और मेरे पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
1: कर
0: रोल विल
1: सकते हैं।
0: सूट मी, तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
1: गया
0: हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
1: जी
0: देर हैज टू बी सम सपोर्ट, जैसे आप तो जानती हैं इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी
1: जी
0: का नाम नहीं ले रहा
1: जी
0: लेकिन किया तो है ना हमारा,
1: जी
0: मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई
1: जी
0: गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है,
1: जी
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था,
1: जी
0: मैं शोज भी करता रहता था,
1: अच्छा
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग, और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
1: जी
0: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
1: सिंगिंग
0: करते
1: दोनों
0: थे, तो ऐसा ही हमारा
1: करते
0: भी
1: थे
0: कुछ वैसा ही था,
1: जी
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा मुझे
1: जी
0: यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे आई वॉज कॉल्ड 10 बजे मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो ये, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया,
1: जी
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती हैं
1: थोड़ा
0: आप
1: सा आप गा
0: श्रोताओं
1: के,
0: को
1: नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे।
0: जो बंद

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स ऑन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है,
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉट स्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीजों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
1: जी
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है,
1: जी
0: आपने अपने आप को उसमें कितना

0: ढाला है।
1: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें
0: जी
1: ढाला है। तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब
0: जी
1: जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
0: अगर वो
1: बात
0: हारते हैं टूटते हैं तो क्या करें?
1: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है,
0: जी
1: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते रस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है,
0: जी
1: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना।
0: जी
1: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म। मुझे
0: जी
1: लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
0: जी
1: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं,
0: जी
1: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
0: जी
1: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्म जन्म के कर्म होते हैं।
0: जी
1: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको
0: जी
1: सक्सेस मतलब गाने का मौका
0: बिल्कुल
1: मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
0: जी
1: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा,
0: जी
1: इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं,
0: जी
1: बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सेक्रीफाइस नहीं किया होगा ना, तो
0: जी
1: होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन।
0: बहुत मेहनत करनी
1: टूटना
0: पड़ेगी,
1: नहीं होता है।
0: टूटना नहीं है। जी तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
1: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग
0: जी
1: भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था।
0: जी
1: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो
0: दिग्गज
1: स्टॉलवॉर्ट्स हैं,
0: लगा
1: मतलब
0: जी
1: इतने
0: मुझे।
1: बड़े दिग्गज
0: जी
1: जो मेल सिंगर्स हुए हैं,
0: जी
1: उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है,
0: जी
1: उनका भी वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो
0: जी
1: भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे,
0: अच्छा जी
1: दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और
0: जी
1: 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और
0: अच्छा
1: मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को।
0: अच्छा
1: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है,
0: जी
1: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला
0: हाँ
1: अंतरा भूपेंद्र ने गाया।
0: अच्छा
1: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी,
0: जी
1: बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी
0: जी
1: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं
0: जी
1: पता नहीं क्यों शुरू से, जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात
0: क्या
1: दिन,
0: बात है
1: मौसम फिल्म का गाना
0: जी।
1: उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके, भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं,
0: जी
1: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे,
0: जी
1: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था।
0: जी
1: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो
0: जी
1: मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं। बोले कहां से आए? मैं बोला कश्मीर से आया
0: जी
1: हूं। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर। फिर
0: मिलने की
1: ऊपर
0: चाहत ने मिला दिया,
1: नहीं, मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो वो अंदर से
0: लिफ्ट
1: हाथ,
0: में ही मिल
1: लेकिन वो
0: गए।
1: नीचे ही मिल गए।
0: जी
1: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने,
0: जी
1: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था, राम लक्ष्मण जी ने से भी उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो
0: जी
1: महान महान लोगों से मिले भी हैं।
0: जी
1: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
0: जी
1: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं।
0: हाँ
1: तो मैंने पहला गीत यही गाया था,
0: तो
1: जो मैं
0: जरा
1: दो लाइन आपको सुना के

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का
1: जी।
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी,
0: हैं,
1: जी, जी, मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड करता
0: इन
1: हूं।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहां चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बंबई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।
0: बहुत धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और

0: डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी और आप सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संगीत राजू सिंह का, एल्बम तुम आए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगमोहन सुरसागर की आवाज में ये गीत एल्बम द बेस्ट ऑफ जगमोहन।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा। इस एल्बम का गाना समीर के बोल, संगीत है अदनान सामी का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार शेवन बिजनोरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: तरंग।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।
2: सरकती जाए है

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना,

0: वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत एल्बम तलाश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत पोहनकर की आवाज में ये गीत। एल्बम का नाम पिया बावरी, गीत और संगीत अजित अभिजीत पोहनकर का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान

0: उनसे कुल 68,53,000 रुपये बरामद हुए। सीआरएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला गीत है अनोखी रात, इस फिल्म से मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, संगीत है रोशन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अमित कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर की बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश, इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनू रॉय का।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद हो आई।

0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, संगीत इन दत्ता का।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्वकप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय

टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरफेन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In Kerala, red alert has been declared in all coastal districts of the state until this evening. The alert warns of potential waterlogging and sea attacks in coastal areas. Waves up to 1.8 meters high are expected until 5:30 p.m. today. It is also advised to completely avoid trips to beaches and recreational activities in the sea. In badminton, India's women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. And with that, we end this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से. ये आकाशवाणी रांची है. 1:10 होने वाले हैं और अब वक्त है प्रादेशिक समाचार का.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी. पहले मुख्य समाचार. झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन के बाहर नौकरी गंवाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जारी. हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई. पूर्व सिंहभूम जिले को बड़ी उपलब्धि. शिक्षा प्रदर्शन में झारखंड में हासिल किया प्रथम स्थान. झारखंड में डूबने से होने वाली मौतों पर लगेगी रोक. राज्य स्तरीय कार्यशाला में 90 दिनों की कार्य योजना पर बनी सहमति. संवेदनशील स्थान होंगे चिन्हित. देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर लूट कांड का खुलासा. बिहार से 5 अपराधी गिरफ्तार. और बोकारो में शुरू हुई एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता. देश भर से जुटे तीरंदाज. जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने में खेलो इंडिया की सराहना की. और अब समाचार विस्तार से. झारखंड सरकार की ओर से 22 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त अफसरों की सेवाओं पर संकट खड़ा हो गया है. सीजीएल नियुक्ति रद्द होने से नौकरी से हटाए गए अधिकारी आज भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हैं. उन्होंने कल प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला. उन्होंने पूरे मामले की जाँच की मांग की है. साथ ही सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर आज सुनवाई होनी है. सफल अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा को रद्द करने के फैसले को उनके भविष्य पर संकट बताया.
3: देखिए अभी तो हम लोग आंदोलन करेंगे. रात में एक फरमान जारी होता है 12 बजे कि आप लोगों की परीक्षा रद्द कर दी गई है. मगर सरकार को ये सोचनी चाहिए कि ना जाने कितनी रातें हम लोगों ने जाग करके इस एग्जाम के लिए पढ़ा था तब जा करके हमने इसमें सफलता पाई. मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर किसी का एक उंगली अगर खराब हो जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से कुछ भी हो तो वो आप उंगली काट के हटाएंगे या फिर पूरी बॉडी को ही हटा देंगे? वैसा तो आप नहीं करेंगे.
4: 17 तारीख तक हमारा नौकरी था. 18 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि सारे एग्जाम रद्द हो गई है. पहले तो सीजीएल में जाँच हो रहा था. हम लोग को उम्मीद था कि सीजीएल में जांच हो, कुछ उसका कार्यवाही हो और जो सही बच्चे हैं उनको न्याय मिले. लेकिन देख रहे हैं तो न्याय क्या, सारा ही एग्जाम कैंसिल हो गया.
2: झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पूर्वी सिंहभूम जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस रिव्यू की अगस्त 2026 की 15वीं मासिक रिपोर्ट में पूर्वी सिंहभूम ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है. जिले ने लर्निंग आउटकम विद्यालय अनुश्रवण पर्यवेक्षण और गुणवत्तापूर्ण डेटा रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. रांची विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग और झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 21 और 22 अगस्त को श्रोडिंगर समीकरण के 100 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आरयू के आर्यभट्ट सभागार में किया जाएगा. इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 300 भौतिकी व अभियांत्रिक प्राध्यापक और रिसर्च स्कॉलर जुटेंगे तथा विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते आयामों पर 100 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे. दुमका के सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर 5 सत्र 2023-27 का परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा की तिथि एक साथ जारी कर दी है. विद्यार्थी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक बिना विलंब दंड के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे. परीक्षा 18 सितंबर से 30 सितंबर तक ली जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स में चिकित्सकों और कर्मियों की कमी दूर करने के लिए साल 2026 के अंत तक सभी आवश्यक टीचिंग

0: पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कल रिम्स सेंट्रलाइजेशन कमेटी की बैठक में भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और रेशनलाइजेशन के आधार पर मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन करने के निर्देश दिए। बैठक में रिम्स में NMCI को 100% लागू करने, प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पदों पर भर्ती और पारदर्शी मानदंड तय कर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार करने पर भी चर्चा हुई। राज्य में गंभीर और जटिल बीमारियों के कारणों की पहचान और अनुसंधान के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट का शिलान्यास कल अनगड़ा में किया गया। विधायक राजेश कच्छप और केंद्रीय स्वास्थ्य उप सचिव धरकत आर लुई कांग ने यूनिट की आधारशिला रखी, जो रिम्स रांची के साथ मिलकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बीमारियों के वैज्ञानिक अध्ययन पर काम करेगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य स्तरीय कंसल्टेशन आयोजित कर स्टेट एक्शन फ्रेमवर्क फॉर ड्रोनिंग प्रिवेंशन तैयार करने का निर्णय लिया गया है। रांची में कल आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग और RRLI जैसी संस्थाओं के सहयोग से हुई बैठक में आपदा प्रबंधन, वन पर्यावरण, शिक्षा और पंचायती राज विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2025 के बीच राज्य में डूबने से 161 लोगों की मौत हुई है, जिसे देखते हुए जोखिम वाले स्थानों पर बैरियर लगाने, बचाव उपकरण लगाने और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देने पर सहमति बनी। दुमका जिले रानेश्वर और दुमका सदर प्रखंड के किसानों ने मसानजोर पन बिजली केंद्र की दोनों इकाई को चालू करने और झारखंड क्षेत्र को भी यहां उत्पादित बिजली देने की मांग की है। मसानजोर डैम पन बिजली केंद्र की दो इकाई में से फिलहाल एक इकाई चालू है। देवघर जिले में फर्जी GST अधिकारी बनकर कारोबारी से 40,50,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि बिहार के जमुई और बांका जिले से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
1: एक राइस मिल ओनर, वो 40,50,000 अपने स्टाफ के साथ ले रहे थे। कुछ अभियुक्तों ने हमको रोका और खुद को GST के ऑफिसर्स बताते हुए इनसे पूछताछ करने लगे। तो इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 3 अभियुक्त अभी तक फरार चल रहे हैं। इस मामले के उद्भेदन से 2 और कांडों का उद्भेदन हुआ है।
0: सिमडेगा में ASI को ट्रैक्टर से कुचलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि घायल ASI रांची में इलाजरत हैं।
2: पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT टीम का गठन किया गया था, के आधार पर सिमडेगा थाना प्रभारी द्वारा ट्रैक्टर के मालिक एवं ड्राइवर को विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात चालक द्वारा बताया गया कि इसका मालिक द्वारा बताया गया था कि अगर कोई बीच में रास्ता में रोकता है तो उसको कुचल करके चल जाना है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में चल रही NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश भर के नामी तीरंदाज निशाना साध रहे हैं। 27 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में 2025 के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ऋषभ यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया का बढ़ता बजट और खेल सुविधाओं में सुधार मिनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने में मदद कर रहा है।
3: हेलो, मेरा नाम ऋषभ यादव है। मैं वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2025 में। सरकार की तरफ से जो नीतियाँ है सब चीज है, पिछले 10 साल में हमने बहुत इम्प्रूव किया है। स्पोर्ट्स बजट अभी रिसेंटली में खेलो इंडिया का बढ़ा दिया गया है, कोई नया है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है शुरू करने के लिए, कि 10 साल में जब क्या पता इंडिया

0: ओलंपिक होस्ट करें तब वो तैयार हो।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन के बाहर नौकरी गंवाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जारी। हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। पूर्व सिंहभूम जिले को बड़ी उपलब्धि। शिक्षा प्रदर्शन में झारखंड में हासिल किया प्रथम स्थान। झारखंड में डूबने से होने वाली मौतों पर लगेगी रोक। राज्य स्तरीय कार्यशाला में 90 दिनों की कार्य योजना पर बनी सहमति। संवेदनशील स्थान होंगे चिन्हित। देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर लूट कांड का खुलासा। बिहार से 5 अपराधी गिरफ्तार। और बोकारो में शुरू हुई एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता। देश भर से जुटे तीरंदाज। जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने में खेलो इंडिया की सराहना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है, पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है, पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है। यही समझ गए तो ठीक, वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही है कि कहना तो सबको होता है, पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए जहां मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है। हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं, पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है, और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना। हेमलता की आवाज है, अनजान के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको बता

सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रहे हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है जिन हालातों से वो गुजर रही हैं उन्हें मैं ये बात कहती हूँ या सलाह देती हूँ। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज़्यादा असरदार और गरिमामय होती है। बोलने की

आज़ादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ 3 शब्द समाए हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, मिली फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर की आवाज़ है, एस डी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते। बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं, अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है, कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहुं शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदि होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है या

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना, प्यासा फिल्म का ये गाना गीता दत्त की आवाज में है।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए, आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

0: land and educational institution. The attack comes as Russia intensifies ballistic missile strikes on Kiev, putting further pressure on Ukraine's limited air defense capabilities. Meanwhile, Ukraine has stepped up long-range strikes against military and strategic targets deep inside Russia. In Kerala, red alert has been declared in all coastal districts of the state until this evening. There are also warnings of high waves and the swell surge phenomenon. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: The alert warns of potential waterlogging and sea attacks in coastal areas. Waves up to 1.8 meters high are expected until 5:30 p.m. today. It is also advised to completely avoid trips to beaches and recreational activities in the sea. Special caution has been advised in the areas of Chombala Ramanattukara, Vallapattanam Newmahi, Kunjathur Kottakunna, Kapil Podiyur, Chellanam Azhikil Jetty, Munambam Maruvakkad and Aattupuram Kodungallur. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: The Indian Meteorological Department has issued orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and East Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, India's women's doubles duo of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat 7 seeds Rin Iwanaga and Kei Nakanishi of Japan in straight games. In hockey, the Indian women's team will face England today in their final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wagener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Trisha Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
2: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के

0: नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा

0: आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी

0: जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिसा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें।

0: और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।
2: जब तक

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए।

0: आज भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
2: नदी नारे

0: सवतिया हाय संग सवतिया न लाओ शाम पैया करूं संग सवतिया न लाओ।
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम शराबी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झामुमो ने केंद्र सरकार के खनिज और खनन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची के सोहराय भवन में पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में खनिज बिल के विरोध और खनिज परिवहन रोकने जैसे कड़े कदमों पर चर्चा की जा रही है। पार्टी की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी का आरोप है कि इस काले कानून से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान होगा।
1: यहाँ से मिनरल्स को बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि केंद्र सरकार सुने और पुनर्विचार करके इस बिल को रद्द करे। और केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है, तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को मिलना चाहिए।
0: इधर एमएमडीआर बिल विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1956 का खनिज कानून नेहरू जी ने बनाया था। उन्होंने चेताया कि अत्यधिक सेस लगाने से राज्य का कोयला महंगा होगा और उद्योग अन्य राज्यों में चले जाएंगे, जिससे झारखंड आर्थिक रूप से बदहाल हो जाएगा।
2: झारखंड के लोगों को विस्थापन और पलायन का शिकार नहीं होना, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून बनाया। अब उलगुलान कर लें या लड़ाई कर लें या झगड़ा कर लें तो इसके बाद क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा? रॉयल्टी भी बंद हो जाएगी और सेस भी बंद हो जाएगा। तो इनके पास जो है अपने गाड़ी में डीजल और पेट्रोल भराने के लिए भी पैसा नहीं, इसके बाद न रॉयल्टी मिलनी न सेस मिलना है। इसके बाद कंगाल होने के अलावा हेमंत सोरेन जी झारखंड वासियों को और क्या करें।
0: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड को मिनरल बेयरिंग लैंड पर सेस राशि लेने का अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को पत्र लिखकर कुछ निश्चित शर्तों के साथ यह अधिकार देने का आग्रह किया है, ताकि इस राशि का उपयोग खनन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और युवाओं के विकास पर किया जा सके। सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर अवैध खनन, नौकरी बेचने और डीएमएफटी फंड में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में शर्तों के साथ ही सेस राशि का उपयोग होना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। आज अभ्यर्थियों ने रांची के प्रोजेक्ट भवन के मुख्य दरवाजे पर बैठकर जोरदार नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने बिना उनका पक्ष सुने भीड़ तंत्र के दबाव में यह फैसला लिया है। चयनित अभ्यर्थी आज शाम 5 बजे मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। दुमका के बासुकीनाथ में चल रहे श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान दुकानों से 118 किलोग्राम फंगस लगा पेड़ा, एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स और केमिकल युक्त हल्दी जब्त कर नष्ट की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिलावटखोर दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि दोबारा पकड़े जाने पर भारी जुर्माने के साथ सीधे जेल भेजा जाएगा।
3: खाद्य प्रतिष्ठान है, उन पर जांच अभियान चलाया गया। जो भी उपयोग में आने वाले खाद्य सामग्री है उनकी ऑन द स्पॉट जांच की गई और जांच के क्रम में करीब 118 केजी पेड़ा जो मानक के अनुरूप नहीं था उनको हमने मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। किसी भी तरह का लापरवाही होती है या फिर मानक के विरुद्ध कार्य होती है तो उन पर हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और जुर्माना भी लगाएंगे।
0: झारखंड से अफीम तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय स्तर के पूर्व पहलवान अमित श्योराण को दिल्ली के मधुबन चौक से गिरफ्तार किया है। हरियाणा निवासी 31 वर्षीय अमित वर्ष 2013 की राष्ट्रीय कैडेट कुश्ती का कांस्य पदक विजेता है। वह दिसंबर 2023 से फरार चल रहा था। राज्य में मॉनसूनी बारिश में सुधार होने से सूखे का संकट कम हुआ है और वर्षा की कुल कमी घटकर अब सिर्फ 10% रह गई है। 1 जून से 19 अगस्त तक राज्य में 633.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक 48% अधिक वर्षा हुई।

जबकि रांची और खूंटी सहित 7 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी बरसा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

सखी सहेली हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती।

0: जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो आज वो कौन है?
1: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है, तो उनके बारे में हम
0: बात करेंगे। और चित्रकार की बात आती है ना, तो चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
1: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
0: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप या किसी भी समय कुछ भी खाते हैं, और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं ऐसा लगने लगता है।
1: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है, चटोरापन कह सकते हैं।
0: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप, कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
0: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, सद्भावना का मतलब क्या होता है? सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है, और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
1: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़ें, प्रगति करें, गीत
1: गीत सुनते हैं।

0: रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कुची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी नृत्य के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता
0: हाँ
1: है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस
1: हाँ
0: वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी,
1: हाँ जैसे
0: अपने
1: कि
0: घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं, और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी, और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त तो परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है
0: जी
1: ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया, और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी।
0: क्या बात
1: उन्होंने
0: है,
1: पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की, लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दूह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
0: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र
1: हाँ,
0: बना
1: चित्र
0: दिया था।
1: बना दिए थे।
0: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की, और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: बिल्कुल, तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते
1: गीत
0: गाने भी
1: सुनवाते
0: सुनते हैं
1: हैं।
0: तो सुन ले।
1: हाँ

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहां कहां तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादुई असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवन समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है जो
0: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वाणी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया।

0: बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा ये संविधान में सूचीबद्ध हैं।
1: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती हैं जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलु, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
0: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
1: हाँ
0: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कारबी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
1: कहते हैं
0: कुरुक,
1: नाम भी
0: कुरमाली,
1: शायद हमने
0: लेप्चा।
1: सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि
0: बिल्कुल,
1: विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
0: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है।
0: बिल्कुल,
1: भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं का जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है।
0: जो
1: अगर
0: लिखित में
1: लिपि
0: नहीं
1: से
0: है।
1: हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहालीस, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजो कर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
1: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है, या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
0: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोक मानस की सहजता दिखाई पड़ती है। जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं, जुड़ी हुई जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी।
1: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं, हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज़्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का
0: जी
1: उपयोग
0: जी
1: करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से चल
0: देखो,
1: सकता
0: जितना
1: है।
0: महत्व विदेशी भाषाओं का है, या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं, तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे
1: बिल्कुल,
0: काम आती है, लेकिन
1: हाँ
0: जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है
1: बिल्कुल,
0: उसका अपना अलग
1: और
0: महत्व
1: साथ
0: है।
1: ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है,
0: जी,
1: उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने हैं कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ चंचल, एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में
0: हाँ
1: महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस, एक

0: आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, ज़िंदगी का मकसद लेकिन ये नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
1: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए, फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है, और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सूझता नहीं सिर्फ खाने के सिवाय। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, या
0: हाँ
1: बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयाँ खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो
1: तब
0: जाता
1: होता
0: है।
1: है बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। और
0: बिल्कुल, तो
1: साथ ही
0: अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल, और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दें और मन को संतुष्टि भी दें।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं, बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है।
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, ये सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, मैंने हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है।
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े हैं, बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसकी वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लें।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं
1: बिल्कुल, एक
0: अभी।
1: हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: तुझको।
1: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
2: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार।

0: आपकी पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बंद कर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की।
1: पुलिस पिकेट के पास से 2 क्विंटल 5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान एक वाहन से यह खेप पकड़ी गई। पुलिस ने मौके से हजारीबाग के बरही निवासी 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा के कुड़ू वन क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 1 लाख रुपए मूल्य की अवैध साल की लकड़ियों से लदा वाहन जब्त किया है। कालीपुर हेंजला मुख्य मार्ग पर हुई कार्रवाई के दौरान चालक अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। और दुमका में भारी बारिश से मसानजोर डैम का जलस्तर 384 फीट पहुंच गया है, हालांकि यह खतरे के निशान से 14 फीट नीचे है। एहतियात के तौर पर मयूराक्षी नहर और पश्चिम बंगाल की ओर पानी का बहाव रोक दिया गया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं?
2: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
2: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं। और सुबह चित्त पर संगीत उस पर 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं। और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है, यहाँ भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए
0: आज। जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
0: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया। तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती है।
0: क्या बात है। और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय?
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है। और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप? कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है। और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि है?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डे गुड़िये के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है। तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की सिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सवाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती हैं और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी और क्या शौक है आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी हैं, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
0: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवन सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर, मध्य प्रदेश से।
0: देवन जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या
1: जी,
0: करते हैं?
1: जी, शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी। जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही की बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सब ही हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी जी,
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो इसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में हम लोगों के क्षेत्र में। और धान, धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है, वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो, या मतलब लता जी की आवाज में, माई रे मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी, मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कांच शॉल होते हैं, मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैं।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप
1: जी,
0: क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा,
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी की उसी जो डिजाइन होगा
0: जी,
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए
0: क्या
1: नजर
0: बात।
1: आते हैं, और झीले डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो झीले डल में जो हाउस बोट होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को
0: क्या
1: झीले डल
0: बात है।
1: के।
0: और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी, इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो
1: जी
0: रेडियो
1: बिल्कुल।
0: सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने
1: जी
0: पसंद
1: बिल्कुल।
0: आते हैं?
1: जी, सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल। तो बताइए, हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी, एक फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम,
0: क्या
1: ए
0: बात है,
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी एड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश संजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है तिल्ली खाते हैं वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है उसका प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम नवरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती है, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही है?
1: मैम गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम दे कर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें। फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना, सब वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहाग राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म प म ग म ग म पनी पनी सा पनी।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी है और आपके कार्यक्रम वो विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो हाँ। तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: जी निकलता है, एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा, और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारती कार्यक्रम

0: मेलो
1: जी
0: परमाई सखी सहेली और वो आते इतना मचार बजे आता है त्रिवेणी क्षेत्र लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा तो।
1: क्या बात है। और बताइए अपने गुना के बारे में, बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें हैं, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
0: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है टेकरी सरकार भी है,
1: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो,
0: हाँ
1: और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
0: हाँ है 20 भुजा देवी,
1: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा
0: बहुत
1: मंदिर है
0: हाँ
1: उनका।
0: बहुत ऊंचाई पर है
1: जी, और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
0: सभी मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना तो।
1: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमें राई प्यार की फिल्म लगा।
1: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहा है बिमोल बसुमतारी मैम।
0: विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध
0: जी,
1: भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी। मैं तो मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी। मैम हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं।
1: जी।
0: तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए? कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी। मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था
0: तो बकायदा कोई कोर्स
1: अभी
0: किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी। उधर दुकान एक था और दुकान से हम

0: बैठा हुआ है। फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
1: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं या कटिंग आप करते हैं, सिलाई कोई और करता है?
0: हम खुद ही सिलाई भी करता है, खुद ही कटिंग करता हूँ मैम।
1: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
0: जी मैम, मैं खुद ही करता हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
1: अरे वाह, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
0: जी मैम, हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
1: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
0: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
1: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
0: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामेका टेम्पल, वो भी ठीक है। कहीं कहीं बहुत है मैम, हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है।
1: बड़ा खूबसूरत सा हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
0: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें भी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं?
0: जी मैम, मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
1: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

का हेलो फरमाइश कार्यक्रम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 02

0: फोन नंबर है 2867-0288 यानी 0222867-0288। इसका दूसरा नंबर है 4002466-2 यानी 0224002462। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है,

चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं, जुगनू और चमकने लगे हैं, चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

जब चांद, तारे, चांदनी, नदी, पहाड़, हवा और रात की खामोशी किसी प्रेम कहानी के साथी बन जाएं, तो फिर दूरियां भी मोहब्बत को रोक नहीं पाती। चांद आज भी हर रात निकलता है, हवा आज भी खिड़कियों को छूती है, थपथपाती है, जुगनू आज भी अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, और कहीं ना कहीं दो दिल आज भी उसी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने की दुआ करते हैं। रात का सन्नाटा तब डरावना नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ लगता है।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। तारे उस रात प्रेमी युगल की अधूरी बातें सुनते रहे, जुगनू उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमाते रहे, नदी उनके प्यार की कहानी अपने साथ बहाती रही, पहाड़ उनकी मोहब्बत के गवाह बने खड़े रहे और हवा हवा हर पल एक दिल से दूसरे दिल तक प्यार का एहसास पहुंचाती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में बंध चुके थे अब।

रात और गहरी हो चुकी थी। भीगी भीगी चांदनी खिड़की से होकर कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी वो सुंदर सी लड़की कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, सुन रहे हो ना? मैं आज भी उसी खिड़की पर बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो पहाड़ों को छूती हुई जंगलों से गुजरी और सीधे नदी किनारे जा पहुंची, जहां वो लड़का बैठा था। हवा ने उसके गालों को धीरे से छुआ। लड़का मुस्कुराया, बोला, हाँ, तुम्हारी खुशबू आज भी इस हवा में बसी है। रात का सन्नाटा अब खामोश नहीं था, उसमें दो दिलों की धड़कने थी।

उस रात चांद उनका आसमान था, तारे उनकी दुआ थे, हवा उनका संदेश थी, नदी उनकी आवाज थी, पहाड़ उनके सहारे बन गए और भीगी हुई चांदनी उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाह। उस रात चांद चांदनी बरसाने लगा था, तारे दुआ बन गए थे, जुगनू नदी के किनारे से उड़ते हुए हवा के साथ उस खिड़की तक पहुंच गए। नदी की हर लहर पुकार रही थी, दो दिल एक दूसरे के लिए ठहर गए थे। कमरे के कोने में बैठी वो प्यारी सी लड़की की आंखें अब चमक रही थीं। उन आंखों में उम्मीद की चमक थी, हाँ, कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दूरी खत्म होगी, यही चांद, यही तारे, यही हवा हमारे मिलन के गवाह बनेंगे।

आरंभ है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सायंकालीन सभा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सायंकालीन सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम विवरण के साथ और जानते हैं अभी से लेकर रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रम को।

से थोड़ी देर बाद हम लेकर हाजिर होंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम शाम 5:35 पर युवाणी चर्चा राजीव गांधी जन्म दिवस और साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वार्ता में आप सुनेंगे ऊर्जा का सदुपयोग करना जरूरी। वार्ताकार है सोनू कुमार शर्मा। शाम 6 बजे हम जुड़ेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में प्रादेशिक समाचार के लिए। शाम 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे किसान। शाम 6:30 आप सुनेंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम, कृषकों को संबोधित कार्यक्रम, ग्रामीण सभा चर्चा में अरहर एवं तिल के रोग प्रबंधक, आज की बात में समसामयिक कृषि कार्य, भेंटवार्ता में नवजात बच्चों की देखभाल, भेंटवार्ता कार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार पशु चिकित्सा पदाधिकारी बरवाली लातेकार, भेंट करते हैं संतोष कुमार, आज की नसीहत, आज का बाजार भाव, आज का मौसम, इस कार्यक्रम के तहत हमेशा की तरह आप सुनेंगे।

शाम 6:55 पर आकाशवाणी रांची के मुख्य प्रसारण सेवा सुनेंगे 7:00 प्रादेशिक समाचार 7:10 के जिले में आज कल 7:30 सुनेंगे एक रंगीन संगीत का कार्यक्रम 7:15 में।

शाम 6:45 आठ बजकर 45 मिनट सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा से समाचार संध्या रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार 9:15 में उर्दू में समाचार 9:30 पर जुड़ेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र की प्रसारण सेवा में जहां सुनेंगे आप आज के फनकार। रात्रि 10 बजे हम लेकर हाजिर होंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 11 बजे रात्रि आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अपनी सभा का समापन करेंगे श्रोताओं 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर कुछ ही पलों में लेकर हाजिर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवा

जोहार नमस्कार युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं, आज बहुत ही खास दिन है, चर्चा का विषय है जो कि हम लेकर हाजिर हैं। हमेशा की तरह चर्चा लेकर हाजिर होते हैं युवाणी कार्यक्रम में, और आज का विषय है जो है आज राजीव गांधी जन्म दिवस, युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। आज 20 अगस्त है। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, वे 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने। तकनीकी भारत की बात करें तो कंप्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिक्षा और युवा, 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार और नई शिक्षा संबंधी पहलों को उनके कार्यकाल से जोड़ा जाता था। 1945 की बात करें तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। राष्ट्रीय सद्भाव, उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। युवा साथियों, राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण के तकनीक, युवा और दूरसंचार की भूमिका की बात करें तो आज है 20 अगस्त, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। एक ऐसा नाम जिसे भारत में तकनीकी बदलाव, कंप्यूटर और संचार क्रांति की शुरुआत से जोड़कर

देखा जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं उनकी। और युवाओं की बात करें अगर हम, तो युवा अगर जागृत हों, ऐसे ऐसे हमारे देश के जो देशभक्त हैं और जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे काम किए जो आज भी हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। और युवाओं के लिए हम बात करें, उनके कार्यकाल में भारत में कंप्यूटर और आधुनिक दूरसंचार को आगे बढ़ाने का विशेष जोर दिया गया। आज जिस तरह मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, सब तकनीकी बदलाव की शुरुआती दिशा पर चर्चा उन्होंने की। युवाओं को लोकतंत्र से अधिक भागीदारी देने के उद्देश्य से मतदान की न्यूनतम आयु 21 घटाकर 18 वर्ष की गई। यह आज के करोड़ों युवा मतदाताओं के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। गांव तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय संस्थाओं को अधिक प्रभावी करने के लिए उनके कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास हुए। शिक्षा की बात करें युवा साथियों, तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की पहल उनके कार्यकाल में हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता था। 20 अगस्त को आज हम उनके जयंती मना रहे हैं। देश में प्रेम, शांति, एकता और भाईचारे को मजबूत करना उन्होंने सिखाया। तो हम बात करेंगे कि क्या आज डिजिटल और तकनीक भारत उस आधुनिक भारत की कल्पना को आगे बढ़ा रहा है जिसकी बात राजीव गांधी किया करते थे। आज जब देश की बड़ी आबादी युवा है, तो युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका कैसी होनी चाहिए।

ये केवल उनकी जयंती मनाने का नहीं है, उन्हें याद करने का नहीं है। राजीव गांधी भारत के आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम देश बनाना चाहते थे। उनके भाषणों और नीतियों में बार बार 21वीं सदी के भारत की बात दिखाई गई है। दोस्तों, आज AI, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन शिक्षा से एक दौर में इस विचार को वर्तमान से जोड़कर हम देख सकते हैं। उनके कार्यकाल में दूरसंचार के विस्तार पर जोर दिया गया। C.DOT जैसे पहले ने भारत में दूरसंचार तकनीकी के विकास में भूमिका निभाई। आज गांव-गांव तक मोबाइल और इंटरनेट पहुंचने के संदर्भ में यह बहुत अच्छा था। जब भारत में कंप्यूटर और ऑटोमेशन तेजी से आगे आने लगे, तब ये चिंता व्यक्त की गई कि मशीनों से रोजगार कम हो सकते हैं। दूसरी ओर तकनीक को समर्थकों का मानना था कि इसके नए अवसर पैदा होंगे। राजीव गांधी स्वयं अपेक्षाकृत कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, इसीलिए उनके व्यक्तित्व को युवाओं की ऊर्जा और नेतृत्व से भी जोड़ा गया। देश के युवा आबादी केवल संख्या नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय की व्यवस्था विकसित की गई। शिक्षा और ग्रामीण प्रतिभा को जोड़ने का यह विषय बहुत ही सही था। स्थानीय स्तर पर सत्ता और विकास में लोगों को भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए गए। जी हां, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसका मूल संदेश आपसी प्रेम, भाईचारा, शांति और राष्ट्रीय एकता है, जो कि आज हम नमन करते हैं अपने युवा कहते ऊर्जा से भरे हम राजीव गांधी की। अगर हम बात करें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, आज हम नमन करते हैं। और युवाओं की ताकत है कि जैसे दिशा निर्देश और जैसे उन्होंने एक भारत के लिए सपना देखा, आप भी आगे बढ़ें और उसे बिल्कुल एक स्वप्न की तरह नहीं, हकीकत की तरह और

गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी हर आदमी को जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीज़ों का प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। जीवन में संचार के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी कारण से ऊर्जा को जीवन संचार कहा जाता है। हम ऊर्जा का उपयोग उसके उत्पादन होने से ज़्यादा तेजी

कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस सबसे अधिक उपयोग में आने वाले हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप हजारों साल के बाद विकसित हुआ है। ऊर्जा संसाधन सीमित है। भारत में दुनिया की आबादी का 16% है और दुनिया के ऊर्जा संसाधनों का लगभग 1% भाग पाया जाता है। अधिकतम ऊर्जा स्रोतों को न तो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और न ही नवीनीकृत किया जा सकता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगले 35 से 40 वर्षों में हमारे ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो सकते हैं। हम ऊर्जा की बचत करके अपने देश की बहुमूल्य मुद्रा की बचत कर सकते हैं। लगभग 75% अपनी जरूरतों का कच्चा तेल आयात से पूरा करते हैं। इस आयात का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपए तक होता है। एक पुरानी भारतीय कहावत है जो इसका इस तरह वर्णन करती है, पृथ्वी, जल और वायु हमारे माता पिता से प्राप्त हमारे लिए एक उपहार ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए कर्ज भी है। इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षण को एक आदत बनाना चाहिए। विश्व में जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ उन सब की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, जिससे सभी प्रकार के मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। परंतु जिस गति से ऊर्जा की जरूरत बढ़ रही है देखते हुए ऊर्जा के सभी संसाधनों को नष्ट होने की आशंका बढ़ने लगी है, खासकर ऊर्जा के उन सभी साधनों को जिन्हें हम पुनर्निर्मित नहीं कर सकते, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, खाने पकाने का गैस आदि। अतः यह जरूरत के अनुसार हम ऊर्जा संरक्षण की ओर विशेष ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हम समय रहते अपने प्रयास करने में सफल नहीं हुए तो संपूर्ण विश्व के लोग खतरे में पड़ सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गैर नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग करने से हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विज्ञान वैकल्पिक ऊर्जा को उपलब्ध कराने का कार्य तीव्रता से कर दिया है। इसकी प्रमुख विशेषता है इसका कभी क्षय न होना। पवन चक्कियां, बायोगैस और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और ऊर्जा कारों के विकास कार्य किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। वायु एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिससे वायु के गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। फिर यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हर कार्य में मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, लेकिन दैनिक जीवन में ऊर्जा को संरक्षित करना यदि व्यक्ति शुरू नहीं कर दे तो भविष्य के लिए ऊर्जा के अभाव जैसी समस्याएं दूर हो सकती है। दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के प्रयास यदि शुरू किया जाए तो हम हर जगह ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। घर में जब जरूरत नहीं हो तब लाइट का उपयोग बिल्कुल ना करें एवं घर में पंखा बंद रखें। ठंडी हवा के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग करने के बजाय अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोने के बजाय अपने हाथ से धोएं और धूप में सुखाएं। व्यक्ति पैदल चलने के बजाय हर जगह बाइक या कार का प्रयोग करते हैं। ऐसे में आपको साइकिल पर सैर करनी चाहिए या पैदल चलकर अपने छोटे बड़े काम पूरे करने चाहिए ताकि ऊर्जा सुरक्षित की जा सके। इस प्रकार हम ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने प्राकृतिक को एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं।

और इसी के साथ आइए सुनते हैं चर्चा कि युवाओं के लिए जो हमारे एक हम बात बहुत ज़रूरी कहते हैं ऊर्जा का सदुपयोग करना, तो ये बहुत सही है। युवा और ऊर्जा दोनों को साथ में अगर जोड़ लें तो एक नई गति हमें मिल जाती है। युवा साथियों, इसके साथ अपने ऊर्जा का कभी भी सदुपयोग सही दिशा में करना चाहिए, न कि गलत। आज बहुत युवा हैं जो सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे उनसे ज़रूरत से ज़्यादा हैं जो कम नई दिशा को अपना रहे हैं। अपनी ऊर्जा का अप में जो एक संकेत देता है ऊर्जा, हमारे युवा देश की दशा और दिशा बदलते हैं। अगर आप चाह लें तो आप वो कर सकते हैं, और ये इतिहास गवाह है कि जितने भी हमारे युवा क्रांतिकारी हुए उन्होंने भारत की एक दिशा को बदली, उन्होंने भारत की दिशा को बदली। अब तो बहुत बदलाव है कि आपको उतनी भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ये करने की ज़रूरत है कि हम जहाँ पर हैं जैसे हैं

कहाँ के माहौल को कैसे हम सही करते हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा हमारे युवाओं पर निर्भर करता है। घर हो, परिवार हो, वहाँ का परिवेश हो, समाज हो, आप जिस शहर में रह रहे हों वहाँ के हालात कैसे हैं, उन सारे मुद्दों पर आज के युवा, जैसे कि बहुत छोटी छोटी बात है, सोशल मीडिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं, युवा रील बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो कोई भी काम करें तो आप एक मैसेज दें, एक संदेश जो होता है हर काम में वो हमारा आगे जाके सफल होता है। तो युवा ठीक है, हम अपना करते हैं, कोई भी मनोरंजन का काम करते हैं, लेकिन आपको एक मैटर जो होता है कि हम चुन लें उसको कि क्या हमको दिखाना है, हमारे मैसेज हैं वो जा रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, तो उसके लिए कितना परिवर्तन हो रहा है। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप सदुपयोग करेंगे तो युवा साथियों, जाहिर सी बात है कि आप जब भी मोबाइल का भी यूज़ करेंगे और कुछ करने जाएंगे तो उसके पहले आपकी सोच बदलेगी कि आज हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो यही बातें हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे करने की ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम से अब इजाज़त लेते हैं और चलते चलते सुनते हैं आज ये खूबसूरत नगमा, और इसी के साथ हमें देश कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत वापस काम पर लेने का निर्देश दिया है। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लातेहार परिसदन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और मांडू विधायक निर्मल महतो ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान समिति ने स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, विद्युत, पेयजल, राजस्व और खनन सहित विभिन्न सरकारी विभागों के तहत चल रही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के तेलोडीह पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में तेलोडीह पेट्रोल पंप से फॉरेस्ट कॉलोनी तक पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंदगांव थाना प्रभारी मनीष कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बंदगांव क्षेत्र में अफीम तस्करी से जुड़े एनडीपीएस मामले में एक आरोपी का नाम हटाने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी। पलामू में बाढ़ से किताबें गंवा चुकी 5वीं की छात्रा कृतिका कुमारी की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने 24 घंटे के भीतर कृतिका को नई किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए हैं ताकि उसका नवोदय में पढ़ने का सपना पूरा हो सके। और मौसम विभाग ने राज्य में 23 और 24 अगस्त को गरज चमक के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टेनियन केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं किसान वाणी प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आधुनिक खेती के अपनाऊं और जिंदगी के खुशहाल बनाऊं।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में रोरमन का बहुत बहुत स्वागत है। रोरमन के रेडियो संगी मनोज और
0: संध्या बहन बटले
1: जोहार। और ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: हर जगह

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: तो मनोज भाई, का हाल चाल है?
5: एकदम बढ़िया है संध्या बहन। देखो एखन खेती बाड़ी कर दिन है और खेती बाड़ी में कहो तो बढ़िया से खेती बाड़ी में हुआ थे और बरखा पानी भी ऐसा बढ़िया हुआ थे।
4: हाँ।
5: देरी से शुरू होलक लेकिन ठीक ही होते। और कर खेती बाड़ी में किसान चलत है?
4: हमर भी बढ़िया है मनोज भाई, और हमरे आसरा करीला कि हमरे कर किसान भाई बहन मन कर हाल चाल भी नगद हुई, उमन कर खेत खरियान भी बढ़िया हुई है नी।
5: सही बात है संध्या बहन। देखो सरकार दे से बहुत सही सही योजना मन चला जाए जे कि हमरे लिए बनाल जाए और हमरे कर किसान भाई ले बनाल जाए जेकर समय में फायदा उठाए सकेला है नी। और जेकर में एक ठो सबसे बड़ योजना है KCC जेके कि किसान क्रेडिट कार्ड कहना है कि नहीं। हाँ। जेकर और हो रहे 1998 में और एक मुख्य उद्देश्य रहे किसान मन कर बीज खाद और कीटनाशक खरीदे के लिए कम से कम ब्याज दर पर आसानी से नगद ऋण उपलब्ध कराए के है कि नहीं।
4: हाँ मनोज भाई, ई योजना से किसान भाई बहन मन के खेती और पशुपालन संगे मछली पालन लगिन मुरुक कम ब्याज दर में ऋण भेटायला। 3 लाख तक कर ऋण बगैर कोनो गारंटी कर भेटाया जायला। और देखो इकर में ब्याज दर 7% है, लेकिन बेरा से जे किसान भाई बहन मन लोन के भर देवे ना उ मन के 3% कर छूट मिलेला, जेकर से ब्याज कर दर 4% हो जाएला।
5: और संगी साथी मन देखो KCC कर

0: कार्ड बनवाए के लिए हमारे मन के जरूरी जो दस्तावेज है वो है जेकर में है पहचान पत्र और उकर में है आधार कार्ड चाहे वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड जमीन कर कागजात और संगे संगे पासपोर्ट साइज कर फोटो। तो भाई बहन देखो रोरे मन केसीसी कर कार्ड बनवाओ और खेती बाड़ी में एकर बढ़िया से प्रयोग करो और फायदा उठाओ और दूसरे को भी बताओ है कि नहीं।
1: हाँ भाई ई कार्ड कर 5 साल मान्यता होला और एकर संगे देखो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसा सुविधा भी जुड़ल होला।
0: तो संध्या बहन देखो हमरे कर आज किसान वाणी कार्यक्रम में का जुगाड़ करे बताए तू का। देखो सबसे पहले हमारे मन आज कर बात में जाना पर धान में संतुलित उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व कर उपयोग कर बारे में और एक बारे में हमरे के बतावे डॉक्टर विजय पाल भदाना। एक बाद कृषि विकास गीत में हमारे मन सुनो मेघनाथ महतो और संगी मन कर गाउल गीत और नवा उम्र कर नवा फसिल में आज कर एक ठो गाय पालक किसान है नंद किशोर राय। तो भाई बहन देखो हमरे कर खेत में अखन धान में लगल है और धान में बहुत सारा किसान मन कर धान बढ़ जा है करीब जितना बढ़ोतरी होए चाहिए उतना होवत है। तो हमरे मन के अखन कर जे समय में नहीं धान कर फसल में संतुलित उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व कर उपयोग के बारे में हमरे मन के जानक चाहिए ताकि धान कर फसल बढ़िया से हो है कि नहीं।
1: हाँ तो भाई इकरे बारे में जानकारी देवत है डॉक्टर विजय पाल भदाना और इनकर से बतिया है हमरे कर संगी मनोज कुमार।
0: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम जानेंगे धान फसल के अच्छे उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरक और खेतों की देखभाल हम किस तरह कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय पाल भदाना, संयुक्त निदेशक ICAR IIAB नामकुम रांची। विजय सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: मेरे किसान बहनों और भाइयों आप सभी लोगों को जोहार।
0: जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई के खेतों में धान की फसल लगी हुई है और बहुत सारे किसानों के धान की फसल खड़ी हो चुकी है और कुछ बढ़ोतरी भी हो चुकी है और अभी के समय में अच्छे धान के फसल उत्पादन के लिए उसे बहुत कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे वो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे किसान भाई को बताएं कि अभी के समय में जब धान की फसल खड़ी है उस समय हमारे किसान भाई क्या करें अपने खेतों में।
2: जैसा अभी मनोज भाई ने बताया है धान की आप रोपा कर चुके होंगे या जिन्होंने सीधी बुआई की है वो बीज अभी कर चुके होंगे। तो आपका धान अभी मेरे हिसाब से रोपा के बाद या तो 20 दिन हो गए होंगे कहीं 10 दिन हुए हैं और अभी मैं देख रहा था कि रोपा जब खत्म ही हुआ है। तो धान का अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप लोगों ने अच्छे प्रभेद जो वैरायटी जिसको हम कहते हैं या हाइब्रिड का चुनाव किया होगा और उसको अच्छे से लगाया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है आप जो संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें जिसमें हमारा मुख्य रूप से फास्फोरस नाइट्रोजन और पोटास की बात हम करते हैं। यदि आपने इसको चूंकि आप खेती करते आए हैं जो हमारा DAP के जो फर्टिलाइजर होता है फास्फोरस की आवश्यकता उससे पूर्ति करते हैं और नाइट्रोजन हम यूरिया से देते हैं, DAP में नाइट्रोजन भी होता है। तो वो जो आपने कादो जिसमें कहते हैं कादो किया होगा या सीधी बुआई में जो तैयारी की होगी खेत में उसमें डाल दिया होगा तो ऐसे में उसमें हम आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा जो है हम फास्फोरस की डालते हैं जो आपने की होगी। इसके बाद अब हमें ध्यान रखना है कि आपकी जो फसलें हैं वो अलग अलग अवस्था में होंगी। तो एक अवस्था आती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो हम अभी इसको रोपा करते हैं उसके बाद जब उसमें कल्ले बनने शुरू होते हैं उस समय पे आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है जिसमें हम यूरिया नॉर्मली यहाँ पे मिलता है उसको देते हैं। तो उसमें थोड़ी डोज 1/4 चूंकि आधी डाल चुके हैं आप 1/4 या 20% मैं ये कहूँ कि एक बोरा से कम जो 45 किलो का एक बोरा आता है उससे कम आप एक एकड़ में दीजिए मेरे हिसाब से 35 से 40 kg। और पोटास की यहाँ लोग डालते नहीं हैं और आपको ये भी देखना है कि उसमें सूक्ष्म तत्व भी हमारे कम पड़ते हैं और यहाँ मैंने देखा है झारखंड में क्योंकि यहाँ की जमीन में तो आजकल जिंक की कमी होने लगी है। यदि जिंक कम है खेत में तो आपका पौधे को ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें कोई बीमारी हो गई हो, उसका पत्ता पूरा भूरे रंग का हो जाएगा और उसमें ठीक से वो पौधा अपना खाना नहीं बना पाएगा तो उसमें आपके दाने भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये आप पहचान कर लें जो आपका किसी विशेषक से चूंकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषक होते हैं आप अपने खेत में कुछ ऐसा देखें कि भूरे ऊपर से तीसरी पत्ती में यदि भूरे चकते पड़े हुए हैं तो वो जिंक की कमी होती है जिसमें आप जिंक सल्फेट आवश्यकता के अनुसार

0: डाल सकते हैं, उससे भी आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे।
1: अगर हम सर जैविक खाद की बात करें तो इसमें जैविक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: मनोज जी, जैविक खाद अब नहीं, चूंकि आप देखते हैं ये पहले किया जाता है। इस बार कैंपेन चलाया है, अभियान चलाया है, जिसमें हमने खेत बचाओ अभियान था, उसमें हमने ये कहा था कि आप हरी खाद डालिए, ढेंचा लगाइए और उसको मिलाइए, उससे आपकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, सारे पोषक तत्वों की जो बाहर से हम डालते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसकी जरूरत कम होती है।
1: ये तो हो गई संतुलित उर्वरक की बात, जिससे बहुत सारे किसान भाई क्या है कि पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बीमारी हो रहा है, हमारा फसल अच्छा नहीं हो रहा है, तो बीमारी और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे और नियंत्रण हम कैसे कर सकेंगे?
0: यहाँ पे जो मैंने देखा है धान में, धान की कई बीमारियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से धान को, पर यहाँ पे जो सबसे मुख्य रूप से बीमारी है उसमें हम राइस का ब्लास्ट बोलते हैं, जिसको झुलसा रोग भी बोला जाता है, और ये एक बहुत ही मैं कहूँ कि यदि ये अपने इसके लिए अनुकूल वातावरण बने तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें धान का उत्पादन को बहुत ही नुकसान होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लिए जो भी संस्तुति हुई है, जो वैरायटीज आप लोगों को मिली होंगी, जो उगा रहे होंगे, वो सारी ब्लास्ट के लिए रोधी हैं। पर ऐसा भी होता है कि जो पिछले साल रोधी थी वो दो तीन साल में, चूंकि उधर जो राइस का जो फफूंद है, जो इसका ब्लास्ट का फफूंद है, उसका भी ना वो भी खाने के लिए तैयारी करता रहता है, तो वो वैरायटी आपकी ससेप्टेबल भी हो सकती है। तो ऐसे में है मैं समय से पहचान करनी है, तो उसमें क्या होता है, पत्तियों पे भूरे चकते बनते हैं, जिसमें बीच में बिल्कुल जैसा जला हुआ होता है, तो आंख की टाइप का वो बन जाता है। यदि ऐसा दिख रहा है, और उसमें सबसे अच्छा ये है कि हमारे हर जो जिला मुख्यालय हैं उसमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें पादप रोग निवारण के लिए वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, आप उनसे दिखाते हुए उसका उचित उपचार करें। पर इसके लिए अच्छा ये है कि हमारी जितनी भी वैरायटीज जो आप लोगों को यहाँ मिली हैं वो सब रेजिस्टेंट हैं, पर ऐसा दिखे तो आप अपने जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में उनको दिखाइए। दिखाने के बाद ही आप वो सही मात्रा में सही दवाई का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें जो नुकसान है वो 80-90% तक भी हो जाता है, बहुत नुकसान करता है। उसके बाद उसमें वही बीमारी ऊपर चल के गलगोटू हो जाती है, जो कि हाइब्रिड में बहुत ज्यादा होती है, और हमारे किसान यहाँ अच्छी खासी मात्रा में हाइब्रिड लगाते हैं। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे, उसका जो गर्दन होती है, जो हमारा ये बाली बनती है धान की, वो जब जहाँ से पौधे से जुड़ती है वहाँ पे कुछ काला काला भूरा भूरा दिखे, तो तुरंत आप सचेत हो जाइए। पहचान सही यदि नहीं कर पाएंगे तो दवाई भी का खर्चा ही बढ़ेगा, हो सकता है कुछ और हो और आप इलाज कुछ और कर दें उसका। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सही पहचान बहुत जरूरी है।
1: और पहचान के साथ इलाज भी जरूरी है, है कि नहीं?
0: जी, इलाज तो जरूरी है, पर इलाज समय रहते करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहावत है ना, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुगे खेत। यदि आपने सही समय पे, चूंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे किसान सुबह शाम या दिन में एक बार अपने खेत को देखते हैं, और उन्हें जब भी कुछ ऐसी बात दिखाई दे कि उसमें उनको नॉर्मल से पौधा दूसरे टाइप का दिख रहा है, उसकी पत्ती पे कुछ बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, तो उसको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए और जाके हमारे विशेषज्ञ से, क्योंकि वो नंबर दिए हुए हैं जहाँ से आप कृषि विज्ञान केंद्र को पहुँच सकते हैं, हमारे कृषि विश्वविद्यालय को पहुँच सकते हैं, या हमारे संस्थानों में भी आप किसी को भी फोन कर सकते हैं।
1: हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो हमारे नियमित श्रोता रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों को, उनको क्या सलाह देना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप?
0: मनोज जी, मेरा ये मानना है, यदि मैं तुलना करूं, चूंकि हमारा जो जैसे झारखंड में 80% एरिया में यहाँ धान की खेती होती है, और धान यहाँ की मुख्य फसल है, और मुख्य फसल इसलिए भी हो जाती है कि ये हमारा मुख्य खाना है। तो अब इसका उत्पादन यदि मैं देखूं, देश में हमारा जो पूरे ऑल इंडिया का एवरेज है वो 3 टन के करीब धान का एवरेज है, और इसको यदि मैं देखूं सबसे ज्यादा जो पैदावार है वो पंजाब में होती है, जो 4 टन के ऊपर है। फिर उसके बाद यदि मैं यूपी को देखूं तो वो 3 टन के करीब है, और हमारा 2 टन के करीब है। और इसका मैं मुख्य कारण मैं जो जानता हूँ, यहाँ पे जो वर्षा आधारित हम खेती करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, यदि मानसून देरी से आता है तो हम चूंकि कादो करने के लिए खेत में पानी होना बहुत जरूरी है, उतना पानी हो नहीं पाता, तो किसान क्या करते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो उन्होंने बिचड़ा किया है, जो नर्सरी की है, उसकी उम्र बढ़ती रहती है। यदि नर्सरी की उम्र 25 दिन के ऊपर बढ़ती है तो पैदावार गिरती जाती है। तो हमारा क्या, ये मैंने देखा है झारखंड में कि यहाँ

0: का जो उतार चढ़ाव मौसम के साथ या जो हमारी वर्षा का जो पैटर्न होता है उसके साथ बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि यदि हमारे किसान ये परंपरागत तरीके से वो बिचड़ा करके रोपा करते हैं, इसमें यदि वो कम से कम इससे निकल कर वो सीधी बुआई वाले धान का तैयारी करें, क्योंकि अभी हमारे पास में उचित प्रभेद या वैरायटीज हैं जिसको आप सीधी बुआई करके बिना किसी उत्पादन के गिरावट के आप पूरा उत्पादन पा सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा, चूंकि अभी तो चल रहा है, अभी तो आप अपनी फसल में संतुलित प्रयोग कीजिए उर्वरक का, बीमारी की पहचान कीजिए, निदान कीजिए, करवाइए और उसका उचित प्रबंधन कीजिए। पर आगे आने वाले सीजन में यदि आप चाहते हैं कि आपको लगातार और अच्छे उत्पादन मिले, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप सीधी बुआई की तरफ आ जाइए। उसके लिए हमारे पास पहले वैरायटीज नहीं थी, अब वैरायटीज भी हैं और आप यकीन मानिए कि उत्पादन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इससे हमारा बिचड़ा में जो तैयारी करने में जो समय लगता है, जो खेत को कादो करने में जो एनर्जी और खर्चा लगता है और जो लगाने में हमारा जो लेबर लगता है, इस सब से भी हमें छुटकारा मिलेगा और धान की खेती जो है किसान को लाभदायक होगी, ऐसा मैं मानता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपने जाना कि धान के अच्छे उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरक एवं देखभाल के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए मौजूद थे डॉक्टर विजय पाल वधाना। विजय पाल सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो भाई बहन देखो, एखन हमारे मन सुन ली कि धान का जो फसल है ओकर में हमारे मन संतुलित रूप से उर्वरक कर किसान प्रयोग कर सकेला और का हमारे मन के ध्यान देवे के जरूरी है, जेकर से हमारे कर धान फसल बढ़िया से हो और हमारे मन के किसी भी तरह कर कोनो भी तरह कर हमारे मन के कोनो घाटा ना हो, है कि नहीं। हमारे मन के वैज्ञानिक कर बात के मानक चाहिए और अपन खेत में प्रयोग करे चाहिए और संगे संगे दूसर के भी हमारे मन के बताए भी चाहिए, है कि नहीं।
2: हाँ, तो भाई जानकारी तो हमारे मन कर ली, अब चलो संगे संगे रीज रंग भी करेला।
1: सही बात है बहन, देखो खेती बारी करब और रीज रंग ना हो तो ऐसा कैसे हुई। तो आज हमारे मन नागपुर में सुनो मेघनाथ महतो और संगी मन कर गावल गीत, जे कि हमारे के गीत कर माध्यम से संदेश भी देवत है कि खेती बारी तो निज काम है और जैसा खेती बारी करब जैसा मेहनत करब उसने हमारे मन काम आप ही। तो चलो सुनीला आज कर गीत में मेघनाथ महतो और संगी मन कर गावल गीत।

0: अखन हमारे सुनले कृषि गीत नागपुरी में मेघनाथ महतो और संगी मनकर गावल रहे।
1: तो बहिन किशन मन थकल मन तनी हरियर होलक,
0: एकदम हरियर होलक भाई। और खापी खेत में भी अगर संगीत कर संगे काम करूं तो थकान कर पता ही नहीं चले ला है।
1: सही बात है बहन, हमारे मन के गीत सुनते सुनते खेती बाड़ी करे चाहिए। और खेती बाड़ी करे कर पाछे भी हमारे मन देखो सांझ बेरा में अखड़ा में कहब तो गीत संगीत में अपन मन थाकल के दूर करीला और एक दूसरे से भेटाला और गोठियाला कि भाई आज कर हमारे कर खेत किसन रहला, का का जरूरत पड़त है, निक पड़त है, का का देखभाल करे कर हमारे मन जरूरत पड़ेला, इसन हमारे मन आपस में गोठियाला है कि नहीं। सही बात है बहन। और देखो नी अरोरे एक ठो किसान से भेंट के रही और गाय कर बारे में बढ़िया से बातचीत कर रही, तो हमारे मन के सुने के चाहिए कि का का गोठिया है कि नहीं। तो आज कर हमारे कर किसान है गाय पालक किसान नंद किशोर राय, इनकर से गोठिया है हमारे कर संगी संध्या नीलिमा।
2: नमस्कार भाई।
3: नमस्कार।
2: क्या नाम हुआ आपका?
3: नंद किशोर राय।
2: भाई अपने काम के बारे में बताएं, क्या करते हैं आप?
3: गाय पालते हैं।
2: गाय पालते हैं, कितने समय से गाय पालन कर रहे हैं?
3: हम तो शुरू से ही मतलब कर रहे हैं।
2: लगभग?
3: लगभग 40-45 साल हो गया।
2: अभी आपके पास कितनी गाय है?
3: हमारे पास अभी 10 गाय है।
2: आप दूध बिक्री करते हैं तो कितना दूध हो जाता है एक दिन में?
3: 100 लीटर करीब हो जाता है।
2: सुबह शाम मिला के?
3: सुबह शाम मिला।
2: तो भाई दूध आप कैसे बिक्री करते हैं?
3: 55 रुपए में बेचते हैं।
2: कीमत? कितने ग्राहक होंगे आपके पास?
3: मेरे पास में वही 65-67 ग्राहक होंगे।
2: ग्राहक खुद आते हैं या आप पहुंचा देते हैं दूध?
3: पहुंचाते हैं, एक आध दो ठो आते हैं।
2: हाँ।
3: टोटल पहुंचाते हैं।
2: सारा दूध बिक्री हो जाता है?
3: हाँ, टोटल दूध बिक्री हो जाता है।
2: तो लगभग कितनी आय हो जाती होगी?
3: 20-25 हजार तो आदमी कमाई लेता है।
2: हाँ। तो भाई गाय के रख रखाव के बारे में कुछ बताएं, कैसे उसका देखभाल करते हैं?
3: जैसे रखा जाता है, एक बार धोया जाता है।
2: रहने के लिए तो सेट बना दिए?
3: हाँ, सेट बना हुआ है।
2: हाँ। साफ सफाई कैसे करते हैं?
3: साफ सफाई बगल में गोबर फेंकने के लिए है, वो आदमी फेंकता है।
2: हाँ।
3: दो बार तीन बार आदमी फेंकता है, वही ट्रैक्टर लाता है, गोबर ले जाता है।
2: हाँ, गोबर का खाद बनाते हैं?
3: हाँ, गोबर के खाद बनता है, गोबर ट्रैक्टर से ले जाता है, बिक्री हो जाता है।
2: अच्छा। हाँ, आप बताएं कि गाय में क्या क्या बीमारियाँ होती हैं?
3: बहुत प्रकार के बीमारी,
2: जैसे
3: इसे खुरहा हुआ, एक लंपी का भी चला हुआ, वो हुआ, थनैल हुआ।
2: उपचार कैसे करते हैं?
3: उपचार करता है,
2: डॉक्टर बुलाते हैं। तो डॉक्टर पास में है या दूर से बुलाते हैं?
3: कहीं से भी आए तो फोन से मतलब कि कांटेक्ट होता है।
2: अच्छा। हाँ। टीकाकरण?
3: हाँ, टीकाकरण आके बरगाई अच्छी पड़ता है।
2: हाँ।
3: वो आकर टीका दे देते हैं।
2: अच्छा।
3: 6 महीना में खुरहा का?
2: केवल खुरहा का?
3: हाँ, खुरहा का।
2: हर साल टीका दिलाना पड़ता है?
3: हाँ।
2: घरेलू उपचार में क्या करते हैं?
3: घरेलू उपचार में जो मतलब कि जैसे बुखार है तो बुखार का दवा।
2: दवा कहाँ से लाते हैं?
3: दवा लाते हैं कचहरी।
2: गाय को आहार में क्या क्या देते हैं?
3: गाय मानो कुट्टी देते हैं, चोकर, राहर, मकई आटा, बादाम खली, सरसों खली, सब गेहूं दारा, यही सब मतलब आदमी देते हैं।
2: हाँ, खिलाना कितना बार पड़ता है?
3: सुबह शाम आदमी खिलाते हैं।
2: केवल सुबह शाम खिलाने से हो जाता है?
3: हाँ, सुबह शाम।
2: हाँ हाँ। आपके पास कौन सी किस्म की गाय है?
3: जर्सी हुई, फ्रीजियन हुई, एक देसी गाय भी हुई।
2: केवल गाय है या भैंस भी पाले हैं?
3: दो ठो भैंस भी है।
2: भैंस भी है? तो भैंस का दूध का अलग रेट है?
3: हाँ।
2: अच्छा भाई, गाय के लिए हरा चारा बहुत जरूरी होता है?
3: हरा चारा बहुत जरूरी होता है।
2: आप इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं?
3: यहाँ पर तो नहीं हो पाता है, वही कभी हुआ तो आदमी गाजर उजर ले जाता है, कभी थोड़ा बहुत चाहे तो, और हरा चारा का कोई व्यवस्था है नहीं।
2: विटामिन भी खिलाते हैं क्या?
3: हाँ, विटामिन भी खिलाते हैं। विटामिन में जैसे एग्रीमिन पाउडर हुआ।
2: विटामिन जो देते हैं वो रोज का देते हैं?
3: मिनरल पाउडर वो डेली देता है,
2: चारा में मिला के।
3: हाँ।
2: लगभग कितना खर्च हो जाता होगा गाय का देखभाल और खिलाने पिलाने में महीने में?
3: वही महीने में हमको 30-35 हजार रुपया खर्च होता है।
2: 30-35 हजार का चारा खिलाते हैं 10 गाय में?

0: तब तो आमदनी कितनी होती होगी आपको?
1: आमदनी 1,00,000 से ऊपर।
0: तो अकेले तो संभव नहीं है देखभाल, है ना?
1: नहीं सा, और सब मिल के करते हैं।
0: कितने लोग हैं?
1: 3-4 आदमी है, स्टाफ भी है।
0: अच्छा, दूध खुद निकालते हैं या आदमी रखे?
1: अपने भी निकालते हैं, आदमी भी रखे हुए, आधा हम निकालते हैं आधा आदमी से रखे।
0: हाँ, संभव नहीं है ना, 100 लीटर दूध होता है तो। अच्छा है, आमदनी का अच्छा स्रोत है ना।
1: हाँ।
0: दही पनीर सब नहीं बनाते हैं?
1: पनीर जैसे कोई आदमी बोले तो बना के दे देते हैं।
0: मतलब कोई
1: बोले हमको चाहिए तो हम बना के दे देते हैं।
0: बना के देते हैं। गोबर का क्या करते हैं?
1: गोबर हम लोग बेच देते हैं।
0: खाद बना के बेचते हैं या गोइठा?
1: नहीं नहीं, खाद बना के बेच देते हैं।
0: अच्छा, क्या कीमत होती होगी खाद का?
1: 1,200 रुपये ट्रैक्टर।
0: 1,200 रुपये ट्रैक्टर गोबर खाद का? अच्छा, आप देते हैं, किसको देते हैं आप?
1: ट्रैक्टर वाला आता है।
0: ट्रैक्टर वाला को आप 1,200 में देते हैं? हाँ। और ट्रैक्टर वाला किसान लोग को बेचता है
1: 2,400-2,500
0: ऐसे में बेचता है?
1: हाँ, जिसको जैसा
0: कहा। अच्छा, हाँ, तो लगभग गोबर कितना हो जाता होगा?
1: गोबर का
0: गोबर खाद
1: 4 ट्रैक्टर हो जाता है महीना में।
0: एक महीना में ना? हाँ, तो सालों भर का तो अधिक ही होता है ना?
1: तो बरसात में थोड़ा बहुत
0: जाता। तो गाय पालन से परिवार का खर्च आराम से चल जाता है?
1: हाँ।
0: यानी अच्छी आमदनी है ना?
1: हाँ।
0: गाय पालन का कहीं प्रशिक्षण लिए थे क्या?
1: नहीं नहीं।
0: हाँ, मतलब पहले से ही घर में गाय पालन? हाँ। था तो देख देख के हो गया अंदाजा। एक गाय का क्या कीमत होता होगा?
1: 70-75 हज़ार।
0: अभी आपके पास बछड़ा या बछिया कितनी होगी?
1: बछिया 3 है, एक भैंस का खड़ा है।
0: अच्छा, भैंस का बच्चा है। भाई, आपके परिवार में कौन कौन है?
1: एक तो बेटा है, बेटी थी, शादी कर दी है, परिवार है।
0: भाई, रहने वाले कहाँ के हैं आप?
1: हम मुराबादी में रहते हैं।
0: दूध को कैसे पहुँचाते हैं ग्राहक तक?
1: मोटरसाइकिल से लेकर जाते हैं।
0: हाँ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भाई, इतना समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो संध्या बहन रवरे तो बहुत बढ़िया से गोठियाली हमारे कर किसान रहे नंद किशोर राय से, और यह गोठियाली की हमारे कर गाय के का लिखे पोषक चाहिए और दूध के बढ़ोतरी का लिखे करे चाहिए कि नहीं,
0: देखभाल का लिखे करे।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: तो भाई भी मैं देखो कहे चाहते कि आज कर हमरे कर कार्यक्रम सिरा थे और यो कहे चाहते कि खेती बाड़ी करो अच्छा से करो और दूसर के बताओ भी
4: इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरा ला बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर तो कहे चाहते कि खुश रहो मस्त रहो और अपन खेती बाड़ी के बढ़िया से ध्यान दो तोरा और मन के रेडियो संगे मनोज और
4: संध्या बहन के विदा देव
3: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है

नवजात बछड़ों की देखभाल। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी बरवाड़ी लातेहार, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई।

0: पशुधन की, और पशुधन में हम बातें करेंगे जो नवजात बछड़े होते हैं, बछिया होती हैं, मेमने होते हैं, सूकर के बच्चे होते हैं, इन सभी पशुओं के जो छौना छौनी हैं उनको किस तरह से हम देखभाल करें कि बाढ़ बियान अनुकूल रहे, कोई बुरा असर उस पर ना पड़े। और इन तमाम बातों पे जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि नवजात बछड़े बछड़ियाँ मेमने सूकर के बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार करें।
1: पशुपालन का भविष्य जो है उनके बच्चे पर ही निर्भर करता है। बच्चे जितने स्वस्थ होंगे
0: जी
1: तो भविष्य के पशु उतने ही अच्छे होंगे और उनकी उत्पादकता बहुत अच्छी रहेगी। तो इस अगर दिमाग में बात को रख कर करके कि बछड़े कैसे हमारे स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनके पास गाय भैंस बकरी भेड़ ये सूकर रखे हुए हैं और वो गर्भावस्था से अगर गुजर रहे हैं तो उनको 2 माह पूर्व से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 2 माह पूर्व तैयारी शुरू करने का मतलब ये हुआ कि उनको अलग से हम अनाज खिलाना शुरू कर दें। ये अनाज गायों में कितना खिलाएं, भैंसों को कितना दें, बकरियों को कितना दें, भेड़ों को कितना दें, सुकरी को कितना दें, ये किसान भाइयों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर उनके पास अंदाज है कि ये गाय या भैंस हमको बच्चा देने के बाद 10 किलो दूध देगी या 5 किलो दूध देगी, अगर ये अंदाज वो कर लेते हैं तो इसके हिसाब से वो स्वयं जोड़ सकते हैं कि 1 किलो दूध उत्पादन के लिए गायों को प्रति 1 किलो दूध के लिए 400 ग्राम आना चाहिए और भैंस को प्रति 1 किलो दूध के लिए 500 ग्राम आना चाहिए और इसके अतिरिक्त 1.5 से 2 किलो उसके शरीर के लिए भी चाहिए। यानी कि लगभग 5 से 6 किलो अगर 10 किलो दूध देने वाली गाय को अनाज को खिलाते हैं तो वो गाय आपको 10 किलो दूध देगी या भैंस भी आपको दूध देगी। तो उनको इतना अनाज 3 किलो सुबह 3 किलो शाम प्लस और 6 किलो भूसा अगर खिलाते हैं तो वो गाय आपको 2 महीने के बाद जब बच्चा देगी तो वो पूरी तरह स्वस्थ होगी और स्वस्थ पशु के थन का विकास पूरा पूरा होता है। जब पूरा पूरा थन का विकास होगा तो आपको वो पूरा पूरा दूध देगी। साथ में जो खनिज लवण होते हैं मिनरल मिक्स अंग्रेजी में कहते हैं वो बाजार में पाउडर उपलब्ध है, कुछ जगह अस्पतालों में भी उपलब्ध है। तो आप जहाँ कहीं से भी हो, बाजार से हो या पशु अस्पताल से हो, आप ले करके 50 ग्राम मिनरल गाय एवं भैंस को प्रतिदिन दें। और अब बात आती है कि बकरियों और भेड़ों को, तो बकरियों और भेड़ों को चूंकि इनकी गर्भावस्था कम दिन की होती है, 5 महीने की होती है, तो इन्हें भी 2 महीने पहले से 150-200 ग्राम अनाज कुछ भी आप उसको दीजिए और मिनरल मिक्सर जो है 1 चम्मच से 2 चम्मच मतलब 5 से 10 ग्राम प्रति पशु रोज देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: सुकरियों को करीब उनको 1.5 से 2 किलो अनाज की जरूरत है और उन्हें भी मिनरल मिक्सर 20 से 25 ग्राम अगर देते हैं तो उनके बछड़े और सुकर दोनों ही स्वस्थ होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि इन पशुओं जो गर्भवती पशु हमारे हैं उनको 2 माह पूर्व से ही हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो भीड़ में न रहें ताकि दूसरे पशु उनको चोट ना पहुंचाएंगे। चोट पहुंचाने पर उनका गर्भपात हो सकता है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे में पशुपालक भाई ये ऐसे तो गायें या पशु स्वयं ही जो गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं उन्हें देखा गया है कि

0: या तो वो पशु सबसे आगे होते हैं या झुंड में सबसे पीछे होते हैं। इस तरह से वो अपना बचाव खुद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी नासमझी से भी नुकसान होता है, तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि उन्हें भीड़ से अलग कर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आराम कर सकें और उनका समय पूर्व गर्भपात ना हो।
1: अच्छा,
0: इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि बछड़े जो हमारे पैदा होने वाले हैं या छौने छौनी पैदा होने वाले हैं या सुकर के बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो उनको कैसे बचाएं कृमि से। पेट में जो कीड़े होते हैं उसको बचाने के लिए हमें गर्भवती पशु को ही 15 दिन पूर्व पशु चिकित्सक सलाह से उनको कृमिनाशक दवा दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसके पेट में बच्चे पल रहे हैं उनमें भी जो कृमि होगा वो बाहर आ जाएगा।
1: अच्छा।
0: इस तरह से जन्म से पूर्व ही उनके पेट में कृमि नहीं होने पर वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होंगे। इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो पशु गर्भावस्था में हैं उनको जरूर निश्चित रूप से जब पाल दिलाए हैं आप प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, दोनों स्थिति में उसका आपको समय नोट करके रखना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि आप देख लीजिए कि गाय अगर है तो 280 दिन पूरा हो गया है तो आप पूरी तरह से निगरानी करेंगे, क्योंकि गायों में 280 प्लस माइनस 5 में 275 से 285 दिन के बाद बीच में बच्चा देती है। इसी तरह से भैंस लगभग 310 दिन पर बच्चा देती है, बकरी और भेड़ 148 से 151 दिन पर बच्चा देती है, सुकरी 114 दिन पर बच्चे देती है। तो अगर आप ये समय जोड़ कर रखे हुए हैं तो आप इस समय से 3 से 4 दिन पूर्व आप उसका निगरानी बढ़ा दें और देखें कि अगर ये पशु बच्चा देने की स्थिति में है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों को ये देखना चाहिए कि कोई भी गर्भवती पशु अगर पूंछ खड़ा कर दे रहा है और उसके थन में लग रहा है कि अब दूध निकल जाएगा, तो आप ये मान के चलें कि अब ये पशु 24 घंटे के अंदर हमको बच्चा देगी, तो उसे हम घर में ही रखें और उसे के पास भीड़ ना लगाएं, क्योंकि जब हम पशु के पास भीड़ लगाते हैं तो गर्भवती पशु बच्चा देने में शर्माती है और नतीजा कि वो बच्चा नहीं दे पाती है।
1: अच्छा।
0: दूसरा, वहाँ पर कुत्ते या दूसरे जानवरों को नहीं रखना चाहिए, उससे भी गर्भवती पशु हिंसक पशुओं के डर से भी बच्चे नहीं देती है। तो इनसे पशुपालकों को चाहिए कि भीड़ और हिंसक पशु को उसके नजदीक न जाने दें,
1: उन्हें सुरक्षित बात सामने आई
0: सुरक्षित महसूस कराएं।
1: अच्छा।
0: साथ में पशुपालक भाई ये बात का ध्यान रखें कि हमारे देहात में कहावत भी है और घाघ कवि ने बहुत हजारों साल पहले ये बात बोली है कि अगर सावन में गधी अगर बच्चा देती है और गाय अगर भादों में बच्चा देती है और भैंस माघ में बच्चा देती है तो उसके बछड़े के बचने की संभावना या गाय के बचने की संभावना कम होती है। तो ऐसे में पशुपालक भाई इस तरह से अपने गाय का प्लानिंग करें कि वो गाय भादों में बच्चा न दे और भैंस माघ महीने में बच्चा न दे, क्योंकि बच्चा बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मौसम जो है बछड़ों के लिए प्रतिकूल होता है। तो ये काम पहले से लोगों को करना चाहिए। इसके बाद अगर आप देख लिए कि गाय या भैंस बच्चा देने लगी तो आपने अब बच्चा देगी, बच्चा देने पर क्या करना चाहिए, बच्चा देने पर ये आप ध्यान रखें कि गाय 2 से 8 घंटे में या भैंस झार गिराती है तो आप 2 से 8 घंटे तक उसका इंतजार करें।
1: अच्छा।
0: तत्पश्चात अगर न गिराती है तो पशुपालक भाइयों को चाहिए घबराना नहीं, उन्हें चाहिए कि उसको 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम खाने वाला सोडा, 100 ग्राम सरसों तेल में पका करके और 250 ग्राम गुड़ मिला करके उसको 15 से 16 दिन दें ताकि उसे बैदानी की सफाई पूरी पूरी हो सके।
1: अच्छा।
0: और पशु चिकित्सक सलाह से कोई भी एक एंटीबायोटिक 3 दिन चलवा देंगे तो नहीं भी झार गिराने पर उनको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गाय की तरफ हुआ। दूसरी तरफ आता है कि बछड़ा जो बाहर आया है उसे क्या करें। जब गाय या भैंस या बकरी बच्चा दे रही है तो आप ये जरूर ध्यान दें कि जो बच्चा होता है वो पानी की थैली में होता है। पानी की थैली फूटने के बाद उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो नाभि के द्वारा बच्चे को मिलता रहता है वो खत्म हो जाता है। तो 2 घंटे के अंदर अगर गर्भवती गाय भैंस बकरी सुकर अगर बच्चा नहीं दे रहे हैं तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें कि क्या परेशानी है और उस परेशानी को 2 घंटे के अंदर दूर करेंगे तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो बछड़े के बचने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी और दूसरा कि गाय या भैंस या बकरी कम थकेगी तो वो जल्दी से जल्दी भोजन पर लौट जाएगी। तो पशुपालक भाई जब बछड़ा बाहर आ जाता है तो अब क्या करें। बछड़ा बाहर आ गया तो आप यस बकरी के मेमने आ गए हैं बाहर में, छौने आ गए हैं सुकरी के, तो इनको अब आपको करना चाहिए क्या कि नाभि जो उनका है वो लंबा है उसे 2 इंच शरीर से छोड़ करके उसे साफ धागे से बांध लें और साफ ब्लेड से उसको काट दें।
1: अच्छा।
0: इसके बाद अगर दवा आपको बीटाडीन उपलब्ध है तो बीटाडीन लगाए,

0: नहीं है तो न्यूनतम कम से कम हल्दी और सरसों तेल उस पर लगा दें,
1: अच्छा
0: इससे एक एंटीसेप्टिक कवर चढ़ जाएगा तो वो पकेगा नहीं। नहीं तो आए दिन हम लोग देखते हैं अस्पताल में कि नाभि पका हुआ है, फिर उसे ऑपरेशन करना पड़ता है और उसे अनावश्यक रूप से पशुपालकों को
1: खर्चे
0: खर्च
1: लगे।
0: करना पड़ता है, उससे बच सकते हैं। दूसरी बात ये कि गाय और भैंस जब बच्चे देते हैं तो वो अपने से जीभ से चाट कर करके उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये जरूर पशुपालक भाई ध्यान रखें कि पशु का जीभ जो है काफी खुरदरा होता है, गाय का और भैंस का। वो क्या करते हैं कि नाभि को भी नोच देते हैं या चाटने के क्रम में कवर जाता है तो उसे
1: अच्छा
0: इन्फेक्शन होना निश्चित होता है। तो बच्चा देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो नाभि ना चाटें जसम या
1: अच्छा
0: बाहर उसको ना नोचे जसम। तीसरी बात ये कि जब बछड़ा बाहर आ गया है तो उसे अब दूध की जरूरत है, क्योंकि जो देहात में अंग्रेजी में हम लोग क्लस्टम बोलते हैं, देहात में फेनुस कहते हैं, वो उसका जीवन का वरदान है, भगवान के द्वारा गया एक अमृत है जिसे उसको 4 घंटे के अंदर ही पिलाना है।
1: अच्छा
0: अगर 4 घंटे के अंदर नहीं पिलाते हैं तो आप अपने बछड़े बछड़ियों बकरियों के बच्चे जो हैं सुकरी के जो छौने हैं उनको आप निमोनिया से और डायरिया से नहीं बचा सकते हैं। तो इनको 4 घंटे के अंदर झार गाय गिराए या ना गिराए आप इसको 4 घंटे के अंदर दूध
1: पिला दीजिए।
0: फेनुस जरूर पिलाइए। अब बात आती है कितना फेनुस पिलाएं, तो ये बछड़े का वजन आप करिए और उसको देखिए, अगर आपका बछड़ा 20 किलो का है तो उसे लगभग 2 किलो यानी 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, इसी तरह से 30 किलो का अगर बछड़ा है तो 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम वो फेनुस पिलाएं।
1: अच्छा
0: और बकरियों में तो इतना दूध होता नहीं है, जो भी दूध होता है उसे आप पिलाएं, शुक्री के ही बच्चे में है कि जितना वो दूध पी सकता है उसको पिलाएं। इसके पिलाने से 4 घंटे के अंदर आपको ये समस्या जो हमने बताया पूर्व में कि पतला दस्त और निमोनिया, ये दोनों से वो नहीं मरेंगे। तत्पश्चात आता है कि ये जो हमारे गाय के बच्चे हैं भैंस के बच्चे हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर कृमि की दवा निश्चित रूप से
1: पिलाना चाहिए,
0: प्रथम खुराक 1 सप्ताह के अंदर दे देना चाहिए।
1: दे देना
0: इससे क्या
1: चाहिए।
0: होता है कि वो पूरे जो 1 हाथ 1.5 हाथ का आप देखते हैं होंगे फीता कृमि रहती है, एस्केरियोसिस हम लोग बोलते हैं, वो नहीं होगा। और दूसरी खुराक पुनः 20 दिन पर दें, तीसरी खुराक भी 20 दिन पर दें, इस तरह से आपका बछड़े 2 महीने के हो जाएंगे और 2 महीने के बाद प्रत्येक 3 महीने पर आप उसको कृमिनाशक दवा दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सुकर के बच्चे को रखे हुए हैं तो आप उसको 3रा दिन और 14वां दिन, चूंकि उसमें आयरन की कमी होती है तो उनको निश्चित रूप से आयरन का इंजेक्शन 3रा दिन और 14वां दिन अगर लगवा देते हैं तो सुकर के बच्चे में मृत्यु काफ़ी कम हो जाती है।
1: बछड़े में
0: सुकर के जो बच्चे हैं छौना
1: उसमें
0: छौनी कहते हैं
1: जी उसमें
0: उनमें पिगलेट एनीमिया लोहे की कमी से उनमें खून की कमी हो जाती है। इस एनीमिया को रोकने के लिए आप आयरन का इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध है फेइटास नाम का, आप उसको
1: दे
0: 1 ml
1: सकते
0: इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे गाय के बछड़े आते हैं बाहर में, वो चूंकि अभी नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, आप जितने अच्छे नस्ल की सांड से पाल दिलवाते हैं या सीमेन का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे दूध देने वाली गायों की चमड़ी पतली होती है तो उनके बच्चे की भी चमड़ी पतली होती है, तो उन पर बाह्य परजीवी जो आपके गांव देहात में चमोकन अठैल
1: हैं।
0: उफरा कहते हैं इससे उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि ये उसे खून चूस लेंगे तो वो पूरी मजबूती से वो बड़े नहीं हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए मैं पशुपालकों को ये सलाह दूंगा कि अपने पशु चिकित्सक से मिल करके या तो दवा लगाने की आ रही है उसे लगाएं 10 दिन 12 दिन पर, दूसरी उपाय है कि मुंह से दवा खिलाने की भी आ रही है, वो आइवरमेक्टिन का टैबलेट आता है तो उसके वजन के हिसाब से
1: उसे
0: कितनी
1: खिलाएंगे।
0: टैबलेट की ज़रूरत है ये पशु आपको बताएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि उसका वजन कितना है तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर भी दवाई डाल सकते हैं, वो 1 ml दवा 10 किलो वजन पर पीठ पर डाली जाती है। तीसरा है आप सुई दे सकते हैं कि वजन कितना है तो उसके हिसाब से आप 1 ml पर 50 kg के हिसाब से 50 किलो वजन पर 1 ml चमड़ी में सुई दी जाती है। तो ये आप कोई भी चीज़ें जो है अपने पशुओं से सलाह कर करके उसको दें ताकि बाह्य परजीवी का उस पर असर नहीं हो। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि 2 महीने के बाद जैसे ही आपका ये गाय का जो बच्चा है बछड़ा या बछड़ी भैंस का बच्चा है उसे दूध की मात्रा घटा दें, क्योंकि जब जानवर जुगाली करने लगता है तो उसके लिए दूध का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। उसके बजाय उसको दूध कम कर करके आप अनाज की मात्रा बढ़ाएं ताकि उसका बढ़वार पूरा बना रहे। दूसरा कि अगर उसको मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहेंगे और ये कृमिनाशक दवा देंगे तो उसका पेट जो बाहर निकलता है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चे जो बढ़ने लगते हैं तो उनको कैल्शियम

0: कमी होने लगती है। इसीलिए भगवान ने उनको माताओं के थन में या स्तन में दूध जो है वो पूरा आया रहता है, और उससे चूंकि वो आदमी को ही ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में उनको घटा करके आप अनाज दे करके और मिनरल मिक्सर दे करके उसको इस पेट निकलने की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे 2 महीने के बाद अगर दूध कम कर देते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बछड़े का बढ़वार भी बहुत अच्छा रहेगा।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी। नवजात बछड़े बछड़ियाँ में
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। इसी के साथ ही हमारा आज का ग्रामीण सभा कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त प्रदीप को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हम आकाशवाणी के डालरियागंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।

0: डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
4: हर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अभ्यर्थियों को तुरंत काम पर वापस लेने का निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों ने मनाया जश्न। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों में भी जगी न्याय की उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक और कानूनी स्तर पर लड़ेंगे लड़ाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। नीति आयोग के सलाहकार ने साहिबगंज में आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की समीक्षा की। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। और राज्य में वर्षा की कुल कमी घटकर मात्र 10% रही। पश्चिमी सिंहभूम और रांची समेत 7 जिलों में सामान्य से अधिक पानी बरसा। 23 और 24 अगस्त को वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत वापस काम पर लेने का निर्देश दिया है। जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों में जश्न का माहौल है। इस ऐतिहासिक फैसले को उन्होंने न्याय की जीत बताया है। इस आदेश के बाद रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर आंदोलन कर रहे जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों में भी न्याय की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
1: हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं और न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद है। हम लोगों को भी न्याय मिलेगी। 11-13 जेपीएससी वालों को जैसे मिला है तो हम लोगों को भी जरूर मिलेगी। तब तक हम लोग अपना जो अभी प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खनिज और खनन संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर लड़ाई शुरू करने की घोषणा की है।

0: रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में झामुमो की विस्तारित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से बिना किसी सलाह मशविरा के यह निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम जनता पर पड़ेगा।
1: केंद्र सरकार जो विकसित राज्य है, जो सक्षम वर्ग है, उन्हीं के प्रति इनका जवाबदेही ज्यादा बनता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े के प्रति इनकी संवेदनाएं कहीं से भी नहीं झलकती। आज जब एक पिछड़ा राज्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर के एक अहम भूमिका निभाता है, आज उसी राज्य का हक अधिकार समाप्त कर अपनी जेबें भरने की प्रयास में।
0: इधर एमएमडीआर बिल विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1956 का खनिज कानून नेहरू जी ने बनाया था। उन्होंने चेताया कि अत्यधिक सेस लगाने से राज्य का कोयला महंगा होगा और उद्योग अन्य राज्यों में चले जाएंगे, जिससे झारखंड आर्थिक रूप से बदहाल हो जाएगा।
2: झारखंड के लोगों को विस्थापन और पलायन का शिकार नहीं होना, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून बनाया। अब गुलान कर लें या लड़ाई कर लें या झगड़ा कर लें तो इसके बाद क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा? रॉयल्टी भी बंद हो जाएगी और सेस भी बंद हो जाएगा। तो इनके पास जो है अपने गाड़ी में डीजल और पेट्रोल भराने के लिए भी पैसा नहीं, इसके बाद न रॉयल्टी मिलनी न सेस मिलना है। इसके बाद कंगाल होने के अलावा हेमंत सोरेन जी झारखंड वासियों को और क्या करें।
0: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड को मिनरल बैरिंग लैंड पर सेस राशि लेने का अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को पत्र लिखकर कुछ निश्चित शर्तों के साथ यह अधिकार देने का आग्रह किया है, ताकि इस राशि का उपयोग खनन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और युवाओं के विकास पर किया जा सके।
3: केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम के तहत संशोधन लाया है। भारत सरकार से अनुरोध है कि सिर्फ खनिज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए राशि का विशेष योजनाओं चलाने का शर्त के साथ राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करें, तो निश्चित रूप से यह संसाधन हमारे जीवन में अंतर लाएंगे।
0: नीति आयोग के सलाहकार अनुराग सिंह ने आज साहिबगंज में आकांक्षी प्रखंड और जिला कार्यक्रम के तहत संचालित विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य मुख्य निष्पादन संकेतकों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने वंदे मातरम और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। श्री सेठ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा महत्वपूर्ण बहस से भागती रही है और राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा बिना किसी तर्क के हंगामा खड़ा करना और झूठ फैलाना है।
4: जब देश में कानून बन गया है, और हद तो तब हो गई जब राष्ट्रगीत बज रहा हो और सोनिया गांधी बाग बुलबुला, कैसे कैसे क्या एक्ट था? क्या देशद्रोह नहीं है? क्या देश के खिलाफ नहीं है? क्या उनको देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्यों भाई, आप संविधान से ऊपर हो? हाँ, आप तो समझते ही हो कि देश से ऊपर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी से ऊपर मैं। यही तो चरित्र है राहुल गांधी का, न किसी संवैधानिक एजेंसी को मानते हैं, न चुनाव आयोग।
0: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रामगढ़ पुलिस ने आपराधिक कांडों की त्वरित और पारदर्शी जांच के लिए आज प्रिज्म नामक एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में शुरू की गई इस डिजिटल पहल के जरिए एफआईआर दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने तक अनुसंधान के हर चरण की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।

0: का भी एक मैकेनिज्म है जो हम इस समय समय पे बताएगा कि किस कांड में कितना अवधि अभी तक चार्जशीट का आपने बचा है। इसके अलावा जो पुराने लंबित कांड भी है, जो मान लेते हैं 2 साल पुराने लंबित कांड है, 3 साल पुराने लंबित कांड है, उन कांडों की भी प्रभावी समीक्षा इसके माध्यम से जाएगी और ताकि लंबित कांडों में भी आने वाले दिनों में कमी आएगी।
1: गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र की तेलोडी पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर पंचायत वासियों ने मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में तेलोडी पेट्रोल पंप से फॉरेस्ट कॉलोनी तक पैदल मार्च निकाला और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद स्थित झरिया के पाथरडीह कोल वॉशरी में आज काम के दौरान वेल्डिंग मशीन फटने से 3 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर है। आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन कार्य के दौरान हुए इस हादसे के गंभीर घायलों को धनबाद के SNMMCH रेफर किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 23 और 24 अगस्त को गरज चमक के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। 23 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम सहित 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 19 अगस्त तक राज्य में 633.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अभ्यर्थियों को तुरंत काम पर वापस लेने का निर्देश। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों ने मनाया जश्न। JSSC CGL अभ्यर्थियों में भी जगी न्याय की उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक और कानूनी स्तर पर लड़ेंगे लड़ाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। नीति आयोग के सलाहकार ने साहिबगंज में आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की समीक्षा की। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। और राज्य में वर्षा की कुल कमी घटकर मात्र 10% रही। पश्चिमी सिंहभूम और रांची समेत 7 जिलों में सामान्य से अधिक पानी बरसा। 23 और 24 अगस्त को वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: सरायकेला खरसावां जिले में करीब 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के तहत धान की खेती हो रही है। इस वर्ष किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। आत्मा परियोजना के सहायक निदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि जुलाई के बाद अगस्त में भी अच्छी बारिश हो रही है, इससे धान की फसल को काफी फायदा हो रहा है। आत्मा परियोजना के सहायक निदेशक विजय कुमार सिंह ने कहा कि
2: इस वर्ष जो हम लोग का कवरेज है वो तकरीबन 90% तक कवर कर चुके हैं। 10% ही बचा हुआ है कुछ क्षेत्रों में जहाँ की रोपा हम लोग का धान का बचा हुआ है। और रेनफॉल का स्टेटस तकरीबन जुलाई में भी हम लोग को सरप्लस रेनफॉल मिला, जिसके कारण ये हम लोग अचीवमेंट कर पाए हैं। और अगस्त में भी जो रेनफॉल अभी तक का स्टेटस है वो तकरीबन बिल्कुल अनुकूल है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा खरीफ है इस बार वो अच्छा होगा, किसानों के लिए भी अच्छा है और इस जिले के लिए अच्छा ही होगा।
1: ईचागढ़ प्रखंड के गौरांग कोचा में जिला परिषद के तहत बस स्टैंड का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत मिली है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में कई खामियां पाई। उपाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में विभागीय अभियंता से 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने कहा कि
3: निरीक्षण करने गए हम, देखे गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो

0: वो देख के मैंने जिला परिषद के जो जिला अभियंता है उसको लिखित रूप से वो अवगत किया है कि ये जांच करके हम लोग को कैसे कार्य हो रहा है, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जांच रिपोर्ट 7 दिन के अंदर मांगे हैं।
1: बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि बारिश के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इस मौसम में मलेरिया, टाइफाइड समेत कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से आसपास साफ सफाई रखने, दूषित पानी से बचने और बुखार या अन्य लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि
2: बरसात का मौसम है और लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते बीमारियां भी बढ़ती है। सामान्य रूप से जो बीमारी बढ़ती है उसमें मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है और इंटेरिक फीवर जिसको कि टाइफाइड कहते हैं वो भी ज्यादा बढ़ता है। सर्दी खांसी तो कॉमन है ही और इस मौसम में सर्पदस्त की घटना भी बहुत ज्यादा होती है। इन सारे चीजों से बचाव बहुत जरूरी है। कम से कम खान पान का भी देखभाल करना होगा कि बासी खाना नहीं खाएं, ताजा ही खाएं, मसाला तेल का कम उपयोग करें, खाना को ढक करके रखें, स्वच्छ पानी का उपयोग करें।
1: सरायकला खरसावां जिले में मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। राज्य स्तर से जिले को पर्याप्त मात्रा में मलेरिया जांच किट उपलब्ध कराई जा रही है। सिविल सर्जन ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को मलेरिया की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां।
3: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

ट्रांसमीटर यानी 549 किलो हर्ट्स, डीआरएम 558 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आदि।

0: अभी आप आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा सुन रहे थे, प्रायोजित जिले में आजकल प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
2: कहते हैं दोस्तों कि अगर जो हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हमारा शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, हम निरोगी हैं, तभी जिंदगी का भरपूर मजा ले सकते हैं। और ये पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान जो राजेश लेकर आता है नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास की तरफ से, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, जिससे आप जिंदगी का भरपूर मजा ले सकें, आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे, कोई विकार ना हो। अगर विकार हो भी जाए तो आप तक हम जानकारियां पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप सब हाँ पास के डॉक्टर से संपर्क कर सकें, और जो नंबर हम आगे बताएंगे अपने इस कार्यक्रम में उस पर संपर्क कर सकें और अपने लिए एक हेल्दी लाइफ हाँ बना सकें। हमारा जोर बहुत रहता है बच्चों पर। हाँ आप लगातार सुनते होंगे चाइल्ड कार्डियक सर्जरी, चाइल्ड कार्डियक प्रॉब्लम के विषय में, बच्चों के हृदय रोग में अगर कोई समस्या हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे अस्पताल में जो जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में भी बताते हैं। चाहे शरीर में किसी भी तरीके का विकार हो जाए उसको ठीक होना ही होगा, जी हाँ, अगर सही तरीके से इलाज हो जाए। और ये कार्यक्रम जो है आप तक

0: हमें पहुंचाने में यानी आपके राजेश को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। हमने कहा नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास, यहाँ हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है। हाँ, पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं आकर यहाँ पर, और बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। जी हाँ, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलता है। आपके शरीर में कोई भी विकार होना या हेल्थ से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो उसके लिए एक नंबर हम आपको बता रहे हैं, सीधे सीधे डायल कर लीजिएगा और लाभ उठाइएगा। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040। ये नंबर है, इसको डायल करके जानकारियां ली जा सकती हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करेंगे। घर में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और जिससे हमारा अनिष्ट भी होता है, फिर हम उससे उबर जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका निदान भी है, जैसे बर्न, हाँ जल जाना, इसका भी निदान है। और इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में पिछले एपिसोड में ही बुलाया था स्वर्ण लता, डॉक्टर स्वर्ण लता शिरोमणि जी को, आज भी हमारे साथ हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं जिसका जवाब हाँ उनसे लेना है। जिन लोगों ने पिछले सप्ताह नहीं हमारा ये कार्यक्रम सुना था उनके लिए डॉक्टर साहिबा एक बार अपना परिचय फिर से दे दीजिए।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्ण लता शिरोमणि है, मैं एक बर्न्स और प्लास्टिक सर्जन हूँ सर। मैंने MBBS मेरी डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे से किया हुआ है, MS जनरल सर्जरी मैंने एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया हुआ है, और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी की पढ़ाई मैंने तमिलनाडु में चेन्नई से किलपॉक मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है सर।
0: डॉक्टर साहिबा, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ये क्या है, दोनों का तालमेल इसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताइए।
1: जी सर, सो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सर, इट्स नॉट दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, तो ये हैंड इन हैंड साथ के साथ जाते हैं सर। जैसे कि बर्न्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ होती है गर्म पानी के गिर जाने से, गर्म चाय के गिर जाने से, थोड़ी सी लापरवाही, अभी जैसे खेतों में जो बर्न जला, क्रॉप्स जलाने के बाद जो वापस से खेती करते हैं सर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सीडेंट को बढ़ावा देती हैं, तो आग तो लग जाती है लेकिन उसके बाद पेशेंट का क्या करना है, कैसे डील करना है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो वहीं पे जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है साथ के साथ, ये दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों साथ के साथ चलती हैं। तो जैसे बर्न्स के पेशेंट जो है मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि ड्रेसिंग करके ठीक हो जाएगा, पास में रख के घर पे रख करके ठीक हो जाएगा, पर छोटा से छोटा बर्न जो है सर काफी बड़ा घाव बन सकता है, काफी गहरा घाव बन सकता है, जो कि मे बी लाइफ टाइम में कभी ना ठीक हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं सर। तो इसके लिए जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए थोड़ा सा
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: इमीडिएटली मेरे हिसाब से तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि किसको क्या अंदरूनी बीमारी, डायबिटीज, आजकल इतनी सारी बीमारियां डायबिटीज।
1: 0620680304 ये नंबर है। जलने बर्न होने की स्थिति में क्या करें, क्या ना करें, कहां ले जाएं, ये तो जानकारियां ले ही लीजिए, लेकिन दूसरे बीमारियों के बारे में भी इस नंबर पर जानकारियां ली जा सकती हैं।

0: पहुंच जाना चाहिए।
1: जी सो सर, कहीं पे भी बर्न एनीवेयर इन द बॉडी एज सून एज पॉसिबल इज द जितनी जल्दी हो सके इज द मेन थिंग। जितनी जल्दी हो सके आप आए। जहां तक सवाल है कि कौन जल्दी आए और कौन लेट आए, बर्न बहुत ज्यादा है, शरीर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बर्न आपके चेहरे पे है, पेशेंट के चेहरे पे है, पेशेंट के गले में गया है, या फिर ऐसी जगह पे पेशेंट ऐसे कमरे में बंद रहा है जहां पे बर्न हुआ हो और वो धुआं जो है उनके नाक मुंह के द्वारा सूंघा गया हो, तो उन पेशेंट्स को इमीडिएटली हायर सेंटर, टर्शरी सेंटर भेजना बहुत ही जरूरी है। बच्चे, वल्नरेबल पॉपुलेशन सर, जैसे कि प्रेग्नेंट माताएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, इमीडिएट ट्रांसफर बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से सर, जैसे यंग लोग भी हो गए, तो अगर काफी ज्यादा बर्न हुआ पड़ा है, हाथ मुंह पांव अगर हाथों में है तो तुरंत भेजना जरूरी है। उसके अलावा सर काफी चीजें होती हैं पेशेंट के, छोटे से छोटे बर्न भी इमीडिएटली मेरे हिसाब से तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि किसको क्या अंदरूनी बीमारी, डायबिटीज, आजकल इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब कुछ हो रखा है सर, तो वो आपको अस्पताल पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा कि किसको क्या दिक्कत है, और हर चीज को, हर बर्न को ट्रीटमेंट करने की मोडालिटी अलग अलग होती है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि यदि जैसे भी बर्न हुआ है, जिस वक्त भी हुआ है, बुझा करके 15 मिनट पानी में डाल करके सफेद कपड़ा, साफ स्वच्छ कपड़े से उसको लपेट करके आप तुरंत हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए लेकर के जाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और यदि वहां से टर्शरी केयर सेंटर भेजा जा रहा है तो आप इमीडिएटली आ जाएं।
0: आप इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्दी आ जाएं, इग्नोर नहीं करें। एक बात बताइए, हाँ डॉक्टर साहिबा, हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार नंबर बता देते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं। ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन आप पहले इसे बताइए, अगले एपिसोड में आपसे और भी सवाल पूछेंगे।
1: तो हमारे यहाँ पे बर्न में एवरीडे के लिए आपकी ड्रेसिंग की फैसिलिटी है, उसके बाद 24 घंटे आपको डॉक्टर साहब रहेंगे केयर करने के लिए, प्लास्टिक सर्जन, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन आपके लिए अवेलेबल हैं देखने के लिए, डेली वुंड ड्रेसिंग करना, करने से लेकर के यदि उसमें छोटी मोटी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, छोटी से छोटी सर्जरी और बड़ी से बड़ी सर्जरी दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है, आयुष्मान कार्ड के साथ अवेलेबल है। 24 घंटे के लिए आपके पास स्टाफ, बर्न्स का ICU अवेलेबल है, बर्न्स के ट्रेन स्टाफ अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि एक पेशेंट को, बर्न्स के पेशेंट को जरूरत हो सकती है।
0: एक बहुत ही जरूरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं आपसे, कि बर्न में या पैसे की समस्या होती है या लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डॉक्टर के पास नहीं ले जाने का, क्या आयुष्मान कार्ड में बर्न को समावेशित किया गया है? क्या बर्न का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो सकता है और नारायण मेडिकल कॉलेज में क्या ये सुविधा है?
1: डेफिनेटली आयुष्मान कार्ड से बर्न का इलाज हो सकता है, चाहे छोटा से छोटा बर्न हो, चाहे बड़े से बड़ा बर्न हो, किसी भी तरह का बर्न हो, आयुष्मान आपको बर्न का इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड कर रहा है।
0: आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वर्णलता। हम चाहते हैं कि जानकारियां आप तक होनी चाहिए, तभी तो आप क्या करें और क्या ना करें ये जान पाएंगे। बहरहाल इससे ज्यादा भी अगर जानकारी चाहिए तो नोट कीजिए नंबर 6206803040, 6206803040, ये नारायण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नंबर है, आप इसको डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। आज बर्न होने पर, जलने पर किया जाए, इसकी चर्चा हुई, आयुष्मान कार्ड से इसका इलाज हो सकता है इसकी चर्चा हुई, लेकिन हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं, बच्चों की बात है, कि अगर आपके बच्चे में हृदय की कोई बीमारी है तो नारायण मेडिकल कॉलेज के इसी नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का मौका दिया। मुलाकात होगी पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में एक बार फिर से आने वाले समय में। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आयुष्मान। ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आयुष्मान प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और 26 सेकंड हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। देवदास के गाने से हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्रेया घोषाल की आवाज़, इस्माइल दरबार के संगीत और नुसरत बर्द के बोल हैं। फिल्म का नाम है देवदास।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:45 हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम उजाले की ओर। वार्ता में शिक्षा और रोजगार के बीच समन्वय जरूरी, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम। वार्ता का

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय हेतु कौशल विकास कार्यक्रम। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। देश की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किया जाए तो भारत विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बन सकता है। आज केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी एवं

व्यावहारिक कौशल भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं का रोजगार योग्य बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना है। शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय का महत्व। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, नैतिक मूल्य एवं बौद्धिक क्षमता प्रदान करती है, जबकि कौशल विकास व्यक्ति को व्यवहारिक दक्षता एवं रोजगार प्राप्त करने की योग्यता देता है। जब शिक्षा और कौशल का समन्वय होता है, तब विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उद्योगों एवं बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनते हैं। समन्वय के प्रमुख उद्देश्य। रोजगार योग्य मानव संसाधन तैयार करना, बेरोजगारी एवं कौशल अंतर स्किल गैप को कम करना, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देना। नंबर 1, स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई नोडल मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE। इसके उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देना। वर्ष 2022 तक करोड़ों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना। भारत को विश्व का स्किल कैपिटल बनाना। इसके प्रमुख उद्देश्य। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF के अनुसार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना। रोजगार एवं प्लेसमेंट सहायता। महिलाओं एवं ग्रामीण युवाओं को विशेष प्राथमिकता। इसके लाभ। रोजगार की संभावना बढ़ती है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, उद्योगों को कुशल श्रमिक प्राप्त होते हैं, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। नंबर 2, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। इसकी शुरुआत 2015 में की गई। कार्यान्वयन संस्था राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। और इसके उद्देश्य युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र देना, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, पूर्व कौशल को प्रमाणित करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं। निशुल्क प्रशिक्षण, उद्योगों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र, अल्पकालीन प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सहायता, सॉफ्ट स्किल एवं डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्र। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन, कृषि, निर्माण कार्य, सौंदर्य एवं वेलनेस, फैशन डिजाइनिंग, खुदरा व्यापार। इसके लाभ। रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, स्वरोजगार हेतु सहायता, उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण। नंबर 3, जन शिक्षण संस्थान JSS पूर्णाम श्रमिक विद्यापीठ संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। इसके उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अशिक्षित नव साक्षर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रमुख प्रशिक्षण सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, बांस शिल्प। इसकी विशेषताएं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण, निःशुल्क या अत्यंत कम शुल्क, महिलाओं को प्राथमिकता, स्वरोजगार हेतु प्रेरणा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उद्योगों का विकास। नंबर 4, कौशल भारत डिजिटल स्किल इंडिया डिजिटल। स्किल इंडिया डिजिटल या कौशल भारत डिजिटल भारत सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके उद्देश्य डिजिटल माध्यम से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, रोजगार एवं प्रशिक्षण की जानकारी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रमुख सुविधाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई लर्निंग, डिजिटल प्रमाण पत्र, रोजगार पोर्टल, कौशल पाठ्यक्रम,
ऑनलाइन मूल्यांकन।

0: इसके लाभ, कहीं से भी प्रशिक्षण, समय एवं धन की बचत, डिजिटल कौशल का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की स्थापना 2009 में की गई। उद्देश्य, निजी एवं सरकारी संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों के सहयोग से प्रशिक्षण रोजगार उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ एक राष्ट्रीय मानक है जो प्रशिक्षण एवं शिक्षा को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ता है। इसकी विशेषताएं, स्तर आधारित प्रशिक्षण, योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र, योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र, शिक्षा एवं कौशल का एकीकरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, कौशल विकास के लाभ, विद्यार्थियों के लिए रोजगार योग्य बनते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरोजगार की संभावना बढ़ती है, उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि, प्रशिक्षण लागत कम होती है, देश के लिए बेरोजगारी कम होती है, आर्थिक विकास में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत होती है। चुनौतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों की कमी, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, उद्योगों से सीमित समन्वय, प्रशिक्षण के बाद रोजगार की कमी, डिजिटल संसाधनों का अभाव, जागरूकता की कमी, सुधार के सुझाव, प्रत्येक जिले में आधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएं, उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाई जाए, विद्यालय स्तर से कौशल शिक्षा प्रारंभ की जाए, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाए, डिजिटल प्रशिक्षण का विस्तार किया जाए, रोजगार एवं प्लेसमेंट सेवाओं को मजबूत बनाया जाए, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं। निष्कर्ष, भारत के विकास में शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लोगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि, प्रशिक्षण लागत कम होती है, देश के लिए बेरोजगारी कम होती है, आर्थिक विकास में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत होती है। चुनौतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों की कमी, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, उद्योगों से सीमित समन्वय, प्रशिक्षण के बाद रोजगार की कमी, डिजिटल संसाधनों का अभाव, जागरूकता की कमी, सुधार के सुझाव, प्रत्येक जिले में आधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएं, उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाई जाए, विद्यालय स्तर से कौशल शिक्षा प्रारंभ की जाए, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाए, डिजिटल प्रशिक्षण का विस्तार किया जाए, रोजगार एवं प्लेसमेंट सेवाओं को मजबूत बनाया जाए, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं। निष्कर्ष, भारत के विकास में शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, कौशल भारत डिजिटल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एनएसक्यूएफ जैसे कार्यक्रम युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो तो भारत न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकेगा बल्कि विश्व में कुशल मानव संसाधन का अग्रणी केंद्र भी बन सकेगा। कौशल विकास ही विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उजाले की ओर कार्यक्रम वार्ता में शिक्षा और रोजगार के बीच समन्वय हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पे चर्चा हुई। वार्ताकार थे रविंद्र पांडे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र पर।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम श्रोताओं फिल्म दीवाना के इस गाने को अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में नदीम श्रवण के संगीत है समीर के बोल।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। अभी आपने सुना दैवान फिल्म के गाने को। अनुराधा पौडवाल पंकज उदास की आवाज़ में, अजीज कुरैसी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्तपर से। अभी आपने सुना श्रेया घोषाल, सोनू निगम की आवाज़ में, नदीम श्रवण के संगीत और डॉक्टर दीपक स्नेह का के बोल। फिल्म का नाम था चेहरा। और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण, श्रेया घोषाल की आवाज़ में, हिमेश रेशमिया के संगीत हैं, समीर के बोल। फिल्म का नाम है

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल के इस गाने को उदित नारायण, श्रेया घोषाल की आवाज़ में, हिमेश रेशमिया के संगीत और समीर के बोल थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 कुछ ही पलों में होने को हैं। हम समाचार संध्या के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार और 9:30 पर विविध भारती की प्रसारण सेवा छाया गीत। रात्रि 10:00 हम लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में समाचार संध्या के लिए। श्रोताओं, बस

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दो याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक

0: सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जाँच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं फिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदंबर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
3: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
4: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और

0: नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
1: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यप।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पैसे पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार

0: A bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms five-member panel to investigate violence during student protests across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर दाखला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने 11वें से 13वें JPSC और फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तहानात को मनसूख करने के रियासती सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। मरकज ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है ताकि कौमी राजधानी की सबकी शमूलियत वाले और आलमी दर्जे के एक शहर के तौर पर काया पलट की जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया है। और हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने नीदरलैंड में आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रा होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच कायम करने की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए इंसाफ तक रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी और उन्हें कानूनी खिदमात हासिल करने के लिए दरकार वक्त कम होगा। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि हुकूमत लद्दाख की हमजहत तरक्की और वहां के शहरियों के लिए आईनी तहफ्फुज़ात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर तलबा के एहतजाज के दौरान पेश आने वाले तशद्दुद के इल्ज़ामात की आज़ादाना तौर पर जाँच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की सरबराही में एक 5 रुकनी आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी HPEC तश्कील दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी को खास तौर पर इन इल्जामात की जांच करने की हिदायत दी गई है कि पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ मुजाहिरीन की जानिब से सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ मुबैना तशद्दुद और इन अहलकारों को पहुंचने वाली चोटों की भी तहकीकात की जाएंगी। मजकूरा कमेटी के दिगर अरकान में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस शालेंद्र कौर, CBI के साबिक डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुल्कगीर तलबा एहतजाज से मुतालिक कई अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म जारी किया। अदालत आलिया ने कमेटी को अपनी इब्तदाई तहकीकात और नतायज पर अबूरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में तलबा के एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद से मुतालिक अर्जियों की समाअत हो रही थी। ये एहतजाज मुबैना पेपर लीक के खिलाफ किए गए थे। दिल्ली से स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए महताब आलम।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने आज अगले अहकामात तक रियासती सरकार के 11वें से 13वें JPSC सिविल सर्विस इम्तिहानात के जरिए की गई तकर्रियों और फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती को मनसूख करने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन ने इम्तिहानात और तकर्ररियों को मनसूख करने से मुतालिक रियासती सरकार के मंगल के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली तीन अलग

0: अलग अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी है कि मुंतखब उम्मीदवार बहाल रहेंगे। उसने ये भी कहा कि उन्हें फितरी इंसाफ के उसूलों और बाज़ाब्ता तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने रियासती हुकूमत और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC से जवाब तलब किया है और अगली समाअत के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। दो अर्जदाश्तों में 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सर्विस इम्तहाना और तकर्रियों की मनसूखी को चैलेंज किया गया था, जबकि तीसरी अर्जदाश्त का ताल्लुक फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती से था। अर्जी गुजारों के मुताबिक 11वें से 13वें JPSC इम्तहानात के जरिए 342 मुंतखब उम्मीदवार फिलवक्त सर्विस में हैं। रियासती हुकूमत ने इम्तहानात के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL के सिलसिले में CID की तहकीकात की बिना पर इम्तिहानात और तकर्रियों को मनसूख कर दिया था। हुकूमत ने 22 इम्तिहानात को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और 6 इम्तिहानात को होल्ड पर रखा था। 17 इम्तिहानात की तहकीकात करने को कहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स सदारत अवाम मरकूज आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई के जरिए पायदार तरक्की में पेशरफ्त कर रही है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा एक मजमून को शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि अखराजात की शिद्दत में कमी और गैर रिवायती तवानाई की सलाहियतों में इजाफे के ताल्लुक से भारत की तरक्की एक पायदार और सब्ज अंदाज नज़र को तकवीत अता करती है। जनाब मोदी ने पायदार तर्ज जिंदगी, शजरकारी, सर्कुलर मीशत और मुआशरे पर मबनी तताबुक पर हुकूमत की जानिब से तवज्जो मरकूज किए जाने को भी उजागर किया। हुकूमत ने इस बरस 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। गैर मुल्की तजारत के डायरेक्टरेट जनरल DGFT ने आज जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र टैरिफ की शरह के एक कोटे TRQ के तहत 10 लाख मीट्रिक टन खाम शकर की दरामद की इजाज़त होगी। ये कदम त्योहारों के सीजन से पहले सामने आया है, जब शकर की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है और घरेलू बाजार में सप्लाई के मुतालिक तशवीश पैदा हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शकर बनाने वाला मुल्क है। जुनूबी इलाकाई काउंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में वज़राए आला और आला हुक्काम को खित्ते की तरक्की, पेशरफ्त और मुश्तरका मफादात से मुतालिक तरजीहात और मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम हुआ। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन, कर्नाटक के वजीर आला DK शिवकुमार, केरलम के वजीर आला सतीशन, तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमरका और आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग में शिरकत की। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार, जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ वजारतों के आला हुक्काम भी मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग में शुरका ने सेहत के शोबे के लिए फंडिंग, बुनियादी ढांचे, माहौलियाती तहफ़ और इलाकाई सिक्योरिटी के बारे में इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को फ़रोग देने पर जोर दिया। मीटिंग में मुतअद्दिद मसाइल पर बंद कमरे में बातचीत हुई, जबकि शुरका ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीटिंग के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत और जापान के वज़राए दिफा की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हमनसब शिंजिरो कोइज़ोमी ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में बहरी सलामती को मजबूत बनाने, मेक इन इंडिया के तहत दिफाई टेक्नोलॉजी को फरोग देने और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक एतमाद में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए दिफा ने बहरी सिक्योरिटी के शोबे में तआवुन से मुतालिक एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। अपने इफ्तिताही कलिमात में राजनाथ सिंह ने कहा कि एशिया की दो बड़ी जमहूरियतों भारत और जापान की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत के महासागर विजन और जापान के आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल पहल के दरमियान करीबी तालमेल पहले से कहीं ज्यादा अहम है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाई और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज

0: countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच।
2: अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और स्वच्छ जल होना एक समस्या भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो आपके अनुसार आने वाले जो वर्ष हैं, एक या दो दशक की हम बात करते हैं, तो
4: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना, आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

15 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

ने पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती, बेफिक्र, अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

0: I love you,
1: इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को समझाया।

0: खिला कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
1: ये वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न

किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सैफ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे, और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

बारह में सेफ के किरदार लंगड़ा त्यागी को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोमांटिक इमेज में दिखने वाले सेफ इस तरह के नेगेटिव किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। सभी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिल्मी करियर से जुड़ी बातें चल रही हैं, तो यहाँ सेफ की कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी लगता है। इन फिल्मों में सेफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं, रेस। इस फिल्म में कम संवाद में भी सेफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार सेफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सैफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपनी फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाएं।

एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आजकल।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉकटेल।

कैसा कहना है कि वो अब अच्छी स्टोरी देखकर ही फिल्म साइन करते हैं, क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीक से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, कालाकांडी, बाजार और शिफ्ट। शिफ्ट फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग की। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्रेट गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपनी व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध आलेख और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती की प्रसारण सेवा सुन रहे थे छाया गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। तो बने रहें श्रोताओं हमारे साथ अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक ये खूबसूरत सफर में। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा कुछ ही पलों।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड के इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में, एसडी बर्मन के संगीत, शैलेंद्र के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आन मिलो सजना के इस गाने को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। लौटते हैं कुछ ही

अभी आपने सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और अब आइए सुनते हैं जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के गाने को मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के संगीत, शैलेंद्र के बोल।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:42:58 हो चुके हैं। अभी आपने सुना फिल्म सूरज के गाने को आशा भोसले, शंकर जयकिशन के बोल थे, शंकर जयकिशन के संगीत, हर्षद जयपुरी के बोल और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं फिल्म चिराग के इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में, मदन मोहन के संगीत, मजरू सुल्तान

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इसी गाने के साथ आज का फिल्म समाधि का गाना आप सुन रहे श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आर डी बर्मन के संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। रात्रि 11 बजे हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के प्रसारण समय में हिंदी समाचार के लिए, और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार।

0: कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्यबागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ 3री उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level